एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के

अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: में कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

कार्यक्रम आराधना के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको भीमसेन जोशी की सुमधुर आवाज में भजन।

0: भीमसेन जोशी के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है रागी की खेती कैसे करें। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आजकल देखी तो हर जगह जब ले हमर मोट अनाज के बात होइस तो किसान भाई मन एला फेर से उगाए लगे हैं। आज बात करबो रागी के खेती के। रागी के खेती मोटा अनाज के रूप में करे जाते। रागी मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में उगाए जाते। जिला मड़ुआ, अफ्रीकन रागी, फिंगर बाजरा और लाल बाजरा के नाम से भी जानथन। एकर पौधा सामान्य तौर में एक से 1.5 मीटर तक ऊंचाई में पाए जाते। एकर दाना मन में खनिज पदार्थ की मात्रा बाकी अनाज फसल मन से ज्यादा पाए जाते। एकर दाना के इस्तेमाल खाना में कतको प्रकार से करे जाते। दाना ल पीस के आटा बनाए जाते, जेखर रोटी, साधारण रोटी और आनी बानी के जैन क्षेत्र में जैसन खान पान वैसन बनाए जाते। खेती पर उपयुक्त माटी के बात करी त कार्बनिक पदार्थ से भरपूर माटी में एकर खेती बढ़िया ढंग से करे जा सकत है, जैसन भी जेकर क्षेत्र में माटी है। लेकिन बढ़िया उत्पादन पर बलुई दोमट माटी सबले ज्यादा उपयुक्त माने जाते। एकर खेती पर भूया के पीएच की बात करी त 5.5 से 8 के बीच रहे। जल भराव झन हो ऐसा भूया के चुनाव हमन ला करना चाहिए, काबर के जल भराव होए से एकर पौधा खराब हो जाता। खेत की तैयारी बढ़िया ढंग से जुताई करे के ऊपर माटी ला भुरभुरा करे के बाद पाटा लगा लेना चाहिए और गोबर के खातु बढ़िया ढंग से मिझार देवे। उन्नत किस्म के बात करी रागी के बाजार में बढ़िया बढ़िया उन्नत किस्म है, जिला कम समय में ज्यादा पैदावार दिए पर तैयार करे का है। उन्नत किस्म ला आपन ला बताबो JNR 852, GPU 45, चिलिका, ये सब बढ़िया उन्नत किस्म है। क्षेत्र के अनुसार हमन ला आस पास भी बढ़िया उन्नत किस्म मिल जाते। BL 149, RH 374, ये सब उन्नत किस्म है। एकर अलावा JNR 981, भैरवी, अक्षय, PR 202, ये सब बढ़िया सुगर किस्म है। बीज के मात्रा के बात करी, रागी के रोपाई पर बीज के मात्रा बुआई के विधि में निर्भर करते। ड्रिल विधि से रोपाई के दौरान प्रति हेक्टेयर 10 से 12 किलो बीज की जरूरत होते, जबकि छिड़कवा विधि से लगभग 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती। एकर बीज ला खेत में लगाए से पहले ओला उपचारित कर लेना है। बीज ला उपचारित करे पर थीरम, बाविस्टीन या केप्टान दवाई के इस्तेमाल करना है, जेकर से हमन ला लाभ मिलते। रागी के बीज के रोपाई छिड़काव और ड्रिल दोनों तरीका से करे जाते। छिड़काव विधि से एकर बुआई के दौरान एकर बीज ला समतल भूया में किसान भाई छिड़क देते। ओकर बाद ओला नांगर के माध्यम से हल्का जोत दिए जाते, तब लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे चले जाते बीज और बुआई हो जाते। रागी के खेती खरीफ फसल के साथ करे जाते। ए दौरान एकर रोपाई जून से जुलाई महीना तक करे जाते। और सिंचाई के बात करी, सिंचाई के जरूरत ला ज्यादा नहीं होए, काबर बारिश के समय में एकर खेती करथन त मौसमी पानी से एकर सिंचाई हो जाते। अगर पानी नहीं गिरत है तो 10-15 से 20 दिन के अंतराल में इला सिंचाई करत रहना है, जेकर से अच्छा उत्पादन मिलते। उर्वरक के मात्रा के बात करी, रागी के पौधा ला उर्वरक के ज्यादा जरूरत नहीं हो। एकर खेती शुरुआत में खेत की तैयारी के समय लगभग जतका व्यवस्था वैसा पुराना गोबर के खातु ला डाल के माटी मिला देना है। अलावा रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरा NPK के मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में आखिरी जुताई के समय दे देबो, फायदेमंद होते। खरपतवार नियंत्रण की बात करें, रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीका से करे जाते। रासायनिक तरीका से खरपतवार नियंत्रण पर बीज रोपाई के पहले खरपतवार नाशी के छिड़काव खेत में करना है, जबकि प्राकृतिक तरीका से खरपतवार नियंत्रण पौधा के निराई गुड़ाई करके करे जाते हैं। एकर शुरुआत में पौधा के रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद पहली गुड़ाई करना है। रागी के खेती में प्राकृतिक तरीका से खरपतवार नियंत्रण पर 2 पैत गुड़ाई काफी होते।

0: जेकर पहली गुड़ाई लगभग 15 दिन बाद एक पैत और गुड़ाई करे के जरूरत होते। रागी के विभिन्न किस्म के प्रति हेक्टेयर औसतन पैदावार 25 कुंटल के आसपास पाए जाते। एकर बाजार भाव 2700 रुपया प्रति कुंटल के आसपास रही थे। एकर हिसाब से किसान एक पैत में एक हेक्टेयर से 60,000 रुपया तक कमाई आसानी से कर सकते है। राम राम, जय जोहार।
1: रागी की खेती कैसे करें, इस विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। वाचक थे अभिनव गौरहा। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक हैं हरिहरन, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरितमानस गान। मुख्य गायक थे हरिहरन और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। नव विहान में आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास का रास्ता उसकी सड़कों से होकर गुजरता है। सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन नहीं होती, बल्कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और सामाजिक विकास का आधार भी बनती हैं। यही सोच लेकर भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की, जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि ये योजना क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई और इससे ग्रामीण भारत को क्या लाभ मिला है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश के उन ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में उपयोग योग्य सड़कों से जोड़ना जहां अब तक सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वतंत्रता के कई दशक बाद भी देश के हजारों गांव ऐसे थे जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं थी। श्रोताओं, गांव के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में कठिनाई होती थी, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी, किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में दिक्कत, बरसात के दिनों में गांवों का संपर्क कट जाना और रोजगार और व्यापार के अवसरों की कमी। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने महसूस किया कि अगर ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उसे बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना होगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना है, गांव और शहर के बीच संपर्क बढ़ाना है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ाना है। श्रोताओं, इस योजना के तहत प्राथमिकता उन गांवों को दी गई जहां सड़क संपर्क नहीं था। मैदानी क्षेत्र में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव, पहाड़ी आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव। समय के साथ इस योजना का विस्तार किया गया और अधिक गांवों को इनमें शामिल किया गया। ग्रामीण जनता को इससे मिलने वाले लाभ थे। पहले कई बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। सड़क बनने से स्कूल और कॉलेज तक पहुंच आसान हुई है। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में पहले काफी कठिनाई होती थी। अब एम्बुलेंस और अन्य वाहन आसानी से गांव तक पहुंच सकते हैं। सड़क संपर्क बेहतर होने से किसान अपनी फसल सीधे मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। इससे परिवहन लागत कम हुई है और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने लगा है। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला है। लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंचना आसान हो गया है। स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। श्रोताओं, सड़कें केवल

यातायात का साधन नहीं होती, वो समाज को जोड़ती भी हैं। सड़क संपर्क बढ़ने से गांवों का जुड़ाव मुख्य धारा से मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण विकास की सबसे सफल योजनाओं में से एक माना जाता है, जिसका कारण है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, कृषि उत्पादन और विपणन में सुधार आया है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, पलायन की समस्या कुछ हद तक कम हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा मिला है। नव विहान में अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय होगा किसान सशक्तिकरण, हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। हर दिन की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। यादों के झरोखे से कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर। कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर। कलाकार होंगे भूपेंद्र जायसवाल, गीता साहू और साथी में दलेश्वर साहू और साथी। सुबह 10:00 हम लेकर आएंगे कार्यक्रम तुहर गोठ, हमर गीत, प्रस्तुति होगी मानस तिवारी की। कार्यक्रम आपकी पसंद हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रतिदिन की तरह सुबह 11:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

संध्या 5 बजे समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे संध्या 5:05 पर। बेरा की गोट में चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, साथ ही पपीता की उन्नत खेती तैयारी एवं प्रबंधन विषय पर श्री योगेंद्र सिंह सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा से ली गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। भेंट करता होंगे राजू भैया। संध्या 5:35 पर युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युवा जगत हम लेकर आएंगे। आज की बात में चर्चा का विषय होगा विश्व समुद्र दिवस, महासागरों का महत्व। क्रम होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आनंद लीजिएगा। ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का। शाम 7:45 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 8 बजे मोहित चौहान के गीतों को हम पेश करेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीयमल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हरा

0: कर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों को आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

देखिए, प्रकृति ने आज फिर एक नया सवेरा सजाया है। आकाश में सुनहरी किरणों के साथ सूरज अपनी आभा बिखेर रहे हैं। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़िया अपनी मधुर चहचहाहट से वातावरण को संगीत से भर रही है। कहीं कोयल की मीठी कूक कानों में रस घोल रही है, तो कहीं हल्की हल्की हवाएं मन को शीतलता का एहसास करा रही है। रात की नीरवता को पीछे छोड़कर प्रकृति मानो नए उत्साह और नई उमंग के साथ जाग उठी है। फूलों पर ठहरी ओस की बूंदे सूरज की किरणों से चमक रही है, और एक ओर नई ऊर्जा, एक नया विश्वास दिखाई दे रहा है। ऐसे ही खुशनुमा और सुकून भरे माहौल में हम लेकर आए हैं आपका प्रिय कार्यक्रम। तो आइए इस सुंदर सी सुबह का स्वागत मुस्कान के साथ करें और अपने दिन की शुरुआत करें अच्छे विचारों और अच्छे एहसासों के साथ।

0: श्रोताओं, आइए अब सतर्कता और जागरूकता से जुड़ी बातों और जानकारियों को सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट के माध्यम से।
1: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए प्रतिदिन की तरह हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूं तो सिर्फ शहरी नहीं, पूरे जिले में सरल, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात की दिशा में लगातार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में अशोकनगर चौक से बिरकोना मार्ग में अभी उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली चौड़ी सड़क और नाली का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस मार्ग में संबंधित आवश्यक उपकरणों के साथ भारी वाहन दिन भर काम में लगे हैं, इसलिए अभी इस मार्ग से आवागमन करने वालों को विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। आप सभी से अनुरोध है,

0: कार्य की पूर्णता तक धीरे चलें, संभल कर चलें। इसके अलावा बिलासपुर गांव या बिलासपुर शहर अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, आज ही कांग्रेस जनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शाम 4 बजे कांग्रेस भवन में एकत्र हो तथा यहां से रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक के पास स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया गया है। ये सर्वविदित है कि नेहरू चौक जिले का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चौक है। इसकी परिधि में माननीय जिला न्यायालय सहित सैकड़ों शासकीय अशासकीय कार्यालय हैं, इसलिए यहाँ यातायात का दबाव भी बहुत अधिक रहता है। विरोध प्रदर्शन हेतु निर्धारित समय में ही सभी कार्यालय के बंद होने का समय है, जिससे शाम को नेहरू चौक में यातायात का दबाव अधिक होगा। अतः प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रदर्शन से शासकीय कार्य या आम यातायात किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। साथियों, नेहरू चौक के पास SBI की कलेक्ट्रेट शाखा में आने वाले उपभोक्तागण प्रायः अपने वाहन स्टेट बैंक के बाहर सड़क में खड़े कर लंबे समय के लिए बैंक चले जाते हैं। इससे आम यातायात बाधित होता है। आप सभी समझदार उपभोक्ताओं से अनुरोध है, अपने वाहन बैंक के सामने बने मल्टी लेवल कार पार्किंग में ही रखें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि यदि हमारी धरती को अंतरिक्ष से देखा जाए तो वो नीले रंग की एक सुंदर गेंद की तरह दिखाई देती है। इसका कारण है महासागर। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और इसका अधिकांश हिस्सा महासागरों में है। यही वजह है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। महासागर पृथ्वी पर मौजूद विशाल खारे जल का भंडार है। ये सिर्फ पानी का विशाल विस्तार ही नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर भी है। महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने, वर्षा कराने, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कितने महासागर हैं। तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। अंग्रेजी में पैसिफिक ओशन कहते हैं, जिसका अर्थ है शांत। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अटलांटिक ओशन। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। श्रोताओं, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों के बीच स्थित ये महासागर विश्व व्यापार और समुद्री परिवहन का प्रमुख मार्ग है। तीसरा है हिंद महासागर, जो कि व्यापार, मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी है। अगली बारी है दक्षिण महासागर की। ये महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। इसकी ठंडी धाराएं पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। और आखिर में बारी है आर्कटिक ओशन की, जो कि सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। इसका अधिकांश भाग साल भर बर्फ से ढका रहता है। हमारे देश का समुद्री महत्व बहुत बड़ा है। श्रोताओं, भारत को दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी जोड़ती है। श्रोताओं, ये तीनों जल क्षेत्र भारत को विश्व के अनेक देशों से जोड़ते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से ही होता रहा है। आज भी भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है। श्रोताओं, हर साल हम 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व, उनके संरक्षण और समुद्री जीवन के प्रति जागरूक करना है। और हमें इसके महत्व के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि महासागर सिर्फ जल का भंडार नहीं है।

बल्कि जीवन का आधार भी है। पृथ्वी को लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन समुद्री पौधों और सूक्ष्म जीवों से ही मिलता है। ये जलवायु को संतुलित रखते हैं, वर्षा चक्र को संचालित करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मछली और बाकी समुद्री खाद्य पदार्थों का प्रमुख स्रोत है ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग होता है। अनेक औषधियों के निर्माण में समुद्री जीवों का भी उपयोग किया है। इतने सारे उपयोग होने के बावजूद आज महासागर संकट की स्थिति से जूझ रहा है, जैसे कि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण, तेल रिसाव, समुद्री जीवों का अत्यधिक शिकार होना, जलवायु में तेजी से परिवर्तन और समुद्र का बढ़ता तापमान। श्रोताओं, अगर समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग कम करना होगा, समुद्र तटों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, जल और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। श्रोताओं, महासागर सिर्फ पृथ्वी की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार भी है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस वर्षा से हमारी फसलें लहलहाती हैं और जिस जलवायु से हम जीवन जीते हैं, उसके पीछे इन महासागरों का बहुत बड़ा योगदान है।

श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग एक शताब्दी पुराना है। वर्ष 1923 में मुंबई और कोलकाता में रेडियो क्लब द्वारा प्रयोगात्मक प्रसारण शुरू किए गए। बाद में 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद 1930 में ब्रिटिश सरकार ने रेडियो सेवा का संचालन अपने हाथों में लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा गया। ये सेवा मुख्य रूप से सरकारी सूचनाओं और सीमित मनोरंजन कार्यक्रमों तक केंद्रित थी। इसके बाद 1936 में रेडियो सिर्फ सरकारी घोषणाओं का माध्यम नहीं रह गया था, बल्कि पूरे भारत को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय मंच बना। भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, इसलिए रेडियो के लिए ऐसा नाम चुना गया जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। और फिर 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर इसे ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। श्रोताओं, ये सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत में जनसंचार के एक नए युग की शुरुआत थी। ऑल इंडिया रेडियो यानी संपूर्ण भारत की आवाज। श्रोताओं, आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी आकाशवाणी की उपयोगिता कम नहीं हुई है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है विश्वसनीयता। समाचार, मौसम, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां इंटरनेट या टेलीविजन की पहुंच सीमित है, वहां भी रेडियो आसानी से सुना जा सकता है। और यही कारण है कि आज भी आकाशवाणी देश के सबसे व्यापक जनसंचार माध्यमों से एक है। समय के साथ आकाशवाणी ने भी स्वयं को बदला है। आज इसके कार्यक्रम FM चैनल्स, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। तो श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए हमसे और जानकारियां प्राप्त कीजिए देश विदेश से जुड़े हर क्षेत्र की। अब हम ले रहे हैं कार्यक्रम से विदा, तो कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आनंद लीजिए यादों के झरोखे से कार्यक्रम का।

आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म का ये गीत राजेंद्र कृष्णन की रचना थी, आरडी वर्मन का संगीत था। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी के बोलों को शंकर जयकिशन की धुन पर। गायकी मोहम्मद रफ़ी की है और फिल्म का नाम है आरजू।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लीजिए पेश है आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वर में साहिर लुधियानवी की रचना को। धुन बनाई है रवि ने, फिल्म का नाम है वक्त।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आइए सुनते हैं एसडी बर्मन की तर्ज पर आराधना फिल्म का ये गीत। शब्दकार है आनंद बख्शी, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम पेश कर रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, कश्मीर की कली फिल्म से। गीतकार SH बिहारी हैं, संगीतकार OP नैयर हैं।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इसी के साथ यादों के झरोंके से कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही देर में अनुप्रसारित करेंगे।

0: के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने

बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।

0: और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित

0: उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, आपने सुना भूपेंद्र जायसवाल, गीता साहू और साथियों की आवाजों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए अब सुनते हैं दलेश्वर साहू और साथी के स्वरों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत को।

कार्यक्रम अमराई का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। हमारी स्टूडियो की घड़ी में अभी समय हो चला है सुबह के 8:42 और 22 सेकेंड्स। तो आइए सुनते हैं भूपेंद्र जायसवाल, गीता साहू और साथी की आवाज़ों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम अमराई का आखिरी छत्तीसगढ़ी लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र जायसवाल, गीता साहू और साथियों की आवाजों में।

भूपेंद्र जायसवाल, गीता साहू और साथियों की आवाजों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम अमराई यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को अब हम रिले करेंगे।

धुरंधर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जासमीन और सतिंदर सरताज की आवाजों में। गीतकार थे सतिंदर सरताज और जासमीन, संगीतकार शाश्वत सचदेव। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दोस्तों, आज 8 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे, विश्व महासागर दिवस। आज पूरा विश्व महासागर दिवस मना रहा है। कहा जाता है यदि पृथ्वी का हृदय कहीं धड़कता है तो वो महासागरों में धड़कता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागर से घिरा है। ये महासागर हमें वर्षा, जलवायु, भोजन और ऑक्सीजन का संतुलन प्रदान करते हैं। आज महासागरों में बढ़ता प्रदूषण, खास तौर से प्लास्टिक, एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये याद दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाकर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अब एक और संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रवण ने धुन बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत ऋत्विक तलाश शिखर की आवाज थी, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।
1: हाँ।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। सो स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं।

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 मई होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री और मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। 12 चलने वाली ये प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी। 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर से आकार पारंपरिक कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक आयोजित शिविर में युवाओं को 14 प्रकार की पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ना है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में एक नाबालिग समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अर्जुनी पुलिस ने जांच नाके पर कार और पिकअप से 4 ग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। मेचका पुलिस ने कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 450 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 मई को होने वाली की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति है मानस तिवारी की।

तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम मा आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, टेलीफोन लाइन मा व्यवधान होए के कारण आप मन के फोन कॉल के रिकॉर्डिंग नहीं हो पाइस, जिखर हमन ला खेद हवे। तो चलो आज के कार्यक्रम ला हम आपके चिट्ठी पत्री के आधार मा प्रस्तुत करथन, और हम उम्मीद करथन कि ये कार्यक्रम आप मन ला जरूर पसंद आही। सियान मन कहत रहिन कि बिन पानी सब सुन, ए बात के हमला चेत करना है संगवारी हो कि पानी फोकट झन बोहाए, पानी के हम सदुपयोग करी, और घर के अलावा जिन सार्वजनिक जल स्रोत है, नदिया है, तरिया है, तालाब है, एकर भी हमला जतन करना है। और अही विचार के संग आवा देखी

हन कोन कोन श्रोता मन के चिट्ठी पत्री हमला मिले हे। कार्यक्रम मा गीत सुने बर हमला पाती भेजे हमें गणेश धाम परसुली डोंडी लोहारा बालोद ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलउदास जयदास देवेश धनवंतिन बाई मोतिन बाई मानिकपुरी दयालबंद बिलासपुर ले पद्माकर सविता अश्लेषा औ आदित्य राउत बावली ले कमलेश साहू हरेंद्र साहू सुशील बिलासपुरी हा हतकेरा भाटापारा ले पंचू और दादू यादव कतियापारा जूना बिलासपुर ले श्रोता हवें सुशील देवांगन अखिलेश देवांगन लोकेश आशीष रवि शनि रेयांश कान्हा आदित्य देवांगन बमहर चाटी डी ले गंगा देवी देवांगन पूनम धनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिल्की बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन बन बघेरा गांव ले योगेश शारवा आशा शारवा नीरज नीलेश औ कुमारी अंजलि शारवा महादेव घाट अमलेश्वर ले श्रोता संगवारी हमें डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति औ रेयांश ठाकुर लुतरा खमरिया ले नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज आवाज सुन ले थन चतुर साहू और संगवारी मन के गाये ए गुरतुर गीतला।

आप मन सुनियो चतुर साहू और संगवारी मन के गाए ए गुरतुर गीत ला। संगवारी हो, पेड़ पौधा के महत्ता हम सब ला समझ में आते। जब अतका तेज घाम तपत है, भुइयां हां चट चट करत है, ऐसे मां हमला पेड़ के महत्ता और हरियाली के महत्ता, सुघर छांव के महत्ता समझ में आ जाते। हमला चाहिए कि हम अधिक से अधिक संख्या मां पेड़ लगाई और ओला जतन करके बड़ा करे के प्रयास करी। हमर प्रयास ले हरियाली आही और हरियाली ले खुशहाली आही। तो हम उम्मीद करत हन कि आप सबो जी अवैया समय मां अपन अपन तीर तखार मां आसपास मां कोलाबारी मां जरूर पौधा रोपण करिहा और अपन आसपास हरियाली और खुशहाली लाए के प्रयास करिहा। कार्यक्रम के आगू के गीत ला सुने बर हमला पाती भेजे हवे महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा ले ये श्रोता हवे रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, दतरेंगी ले विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना लक्ष्मीना यदु, लालपुर ले लुकेश औ समीर यदु, जांजगीर मेहंदा ले राम नारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप, हथनीपारा भाटापारा ले दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण औ दुलारी वर्मा, पाहरा अहिवारा दुरुग ले ये पाती भेजे हमें पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति औ छाया बंछोर, बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला औ आशुतोष अंगारे, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले श्रोता संगवारी हमें पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र, खुशी औ रौनक सेन। आवा ये सबो संगवारी मन के फरमाइश मा सुन लेथन रामायण वस्त्रकार और अनुपमा मिश्रा के गाए ए गुरतुर गीत ला।

कार्यक्रम में गीत सुने बर हमला पाती भेजे हमें शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर अशरफ अयाज अल्फेज हाजीरुन निशा सईदा खान सादिया खान।

कार्यक्रम मा गीत सुने बर हमला पाती भेजे हमें ग्राम सुरसुली ले कैलाश सुरेश यादव डिकेंद्र औ योगेश यादव औरेठी पारा भाटापारा ले अनीता साहू वीणा साहू नेहा मोनिशा साहू तीव्रता ले हमें अमृतलाल अग्रवाल राजकुमारी नेहा आकाश श्रुति विवेक और विवान अग्रवाल बीरगांव तखतपुर ले जयमुन कोल दिलीप रामायणी भुवनेश्वर कोल पोणी भाटा अकलतरा ले दिलीप चंदन चोवाराम यदु निखिल चंदन वसुंधरा औ प्रांजल चंदन पोणी लाफा ले हवें विद्यानंद साहू त्रिवेणी रानी बबलू सुमन मंटू मिष्टी सृष्टि दृष्टि गन्नू गणेश कान्हा कृष्णा औ अंशु साहू रसेड़ा अकलतरा ले श्रोता हवें मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार कीर्ति संध्या डीकेश वासु डाली और पूर्वेश साहू शांतिनगर पाली ले विष्णु सिंह कोरम संतोषी आरती पूर्वा प्रतिभा योगेश नीलेश चंद्रशेखर और उनखर पूरा कोरम परिवार बासीबार ले शिव नारायण नामदेव सविता देवी राम प्रसाद आंचल चंचल चांदनी विनय कुमार वर्षा और मनोज कुमार कंवर दतरेंगी भाटापारा ले हमें नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि और पुष्पेंद्रमणि वर्मा ग्राम बेलरगांव ले मिथिलेश मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन सिमगा हरदेवलाल पारा वार्ड ले हवें रमेश कुमार यादव माया रिंकू सन्नी और कोमल यादव दरचूरा ले ददुआ साहू भूरी साहू संतोषी दुलौरिन रेखा मोतीलाल कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू पोणी लाफा ले हवें रामसनेही साहू मीना साहू ब्रह्मानंद परमानंद संध्या प्रियंका हर्षु प्रज्ञा तन्मय महिमा सोमांश और आनंद साहू हटौत बाजार लाहौद ले हवें कमलनाथ पटेल राकेश कुमार समीर राजकुमारी पटेल तेलीपारा बिलासपुर ले रज्जन साहू ईशानी साहू छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास ग्राम पंचायत बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौदा सारागांव ले हवें सुजान सहोद्रा आयुष अवकृत वर्मा भाटापारा ले दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम और सौरभ रावत बुड़गहन ले रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश चंद्रकांता चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति रिंगनी ले दिनेश और करुणा वर्मा आवा सुनी बैतल राम साहू और संगवारी मन के गाए ए गुरतुर गीतला

कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहयोग दिहीन पवन थवाई और कार्यक्रम संयोजन करीन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और एकरे संग दया मयाला अंतस्म राख के मानस भाई ला देवा अनुमति तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम समाप्त करे के जय जोहार।

0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति थी मानस तिवारी की।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल है, RD बर्मन का संगीत है और पसंद आप सभी की। शांतिनगर भाटापारा से हमें फरमाइश भेजी है रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज अल्फैज खान, हजरुन्निशा, सादिया खान ने। बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूर जहां, डब्लू वसीम, वली उल्ला नूर जहां। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम, आदिबा तिवारी। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू ने। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। लुत्रा खमरिया से हमारे साथी हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मयाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश कुमार, हाव्या, टानिया रजक। भाटापारा से हमें फरमाइश भेजी है बचकामल, मोतीलाल यादव, वसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू ने। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सिया राम, अश्विनी पांडे, सोना डी से सुब्रत चौधरी, अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार झेरिया।

भाटापारा से रामकुमार राउत, अम्बरिका, गणेश, कार्तिक, युवराज राउत। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, रामायण श्रीवास, हेमंत नामदेव। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन, गिरीश करण, युवान अढ़ावेश यादव। हथबन नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव। कतियापारा जूना बिलासपुर से हमें फरमाइश आई है सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा आदित्य देवांगन की। बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, रावण भाटा। भाटापारा से बबला यादव, रिखीराम यादव, कमलेश्वरी यादव। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। जुनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या, जितेंद्र, किशन, सुनीता, ऋषवंत, हीरेंद्र, नीलकंठ, चंद्रहा, संजीव, त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज़ों में। अगला गीत सुनना चाहा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर, सरिता प्रिंस एकांश गवहाड़कर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाड़कर, श्वेता सुमित ध्वनि गवहाड़कर, डोंगरगांव से हमारे साथी हैं राष्ट्रपाल गजभिये राधिका, अनिष्का तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या, हेमलता डिंपल देवांगन, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलोरिन, रेखा मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, पोटियागला दुर्ग से हमें फरमाइश आई है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक सीमा साहू की, जांजगीर महेंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप, ग्राम धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी सूरज, सुजला ज्योति, रियांश ठाकुर, कटघोरा चिरमिरे रोड से नैन दास, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणी, जय प्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत शौर्य सानवी एवं समस्त परिवार, मेहमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार, बेदबाई वर्मा, सुमित्रा योगिता फलेश्वरी वर्मा, ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, बिरगांव तखतपुर से दिलीप कोल, जैमून रामायणी, भुवनेश्वर कोल, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम, बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु और अंकित देवांगन।

फिल्म का नाम है ये वादा रहा। गुलशन बावरा के बोलों को सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की है।

0: श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए प्रतिदिन की तरह हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूं तो सिर्फ शहरी नहीं, पूरे जिले में सरल, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात की दिशा में लगातार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में अशोकनगर चौक से बिरकोना मार्ग में अभी उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली चौड़ी सड़क और नाली का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस मार्ग में संबंधित आवश्यक उपकरणों के साथ भारी वाहन दिन भर काम में लगे हैं, इसलिए अभी इस मार्ग से आवागमन करने वालों को विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। आप सभी से अनुरोध है कार्य की पूर्णता तक धीरे चलें, संभल कर चलें। इसके अलावा बिलासपुर गांव या बिलासपुर शहर अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, आज ही कांग्रेस जनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शाम 4 बजे कांग्रेस भवन में एकत्र हो तथा यहां से रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक के पास स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया गया है। ये सर्वविदित है कि नेहरू चौक जिले का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चौक है। इसकी परिधि में माननीय जिला न्यायालय सहित सैकड़ों शासकीय अशासकीय कार्यालय हैं, इसलिए यहाँ यातायात का दबाव भी बहुत अधिक रहता है। विरोध प्रदर्शन हेतु निर्धारित समय में ही सभी कार्यालय के बंद होने का समय है, जिससे शाम को नेहरू चौक में यातायात का दबाव अधिक होगा। अतः प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रदर्शन से शासकीय कार्य या आम यातायात किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। साथियों, नेहरू चौक के पास SBI की कलेक्ट्रेट शाखा में आने वाले उपभोक्तागण प्रायः अपने वाहन स्टेट बैंक के बाहर सड़क में खड़े कर लंबे समय के लिए बैंक चले जाते हैं। इससे आम यातायात बाधित होता है। आप सभी समझदार उपभोक्ताओं से अनुरोध है अपने वाहन बैंक के सामने बने मल्टी लेवल कार पार्किंग में ही रखें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, अगला गीत हम लेकर आए हैं नदीम श्रवण की तर्ज पर राजा फिल्म से। समीर की रचना को आवाज दी है उदित नारायण अलका याग्निक ने।

और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी, रौनक सेन की, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, बेमेतरा से हमारे साथी हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, कोरबी बेलतरा से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजित, मानस राज, धतरेंगी भाटापारा से नोखिलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, भाटापारा से बिरजा मानिकपुरी, संजना, संगीता, अंजलि, चारू मानिकपुरी, मिलव मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, भार्गव, निलक्ष और विवान मानिकपुरी, धरसीवा से हमें फरमाइश आई है छेदुलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव की, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर, शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी कोरम, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार, जिला मुंगेली गोल बाजार खपरी कला से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहुल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी, नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा, कटघोरा गांव जुराली से देवचरण पटेल, अंजोरमती, भूपेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, दक्ष कुमार, दिव्यांश कुमार, कुणाल कुमार पटेल, और सुरसुली बालौत से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव। आप सभी की फरमाइश पर हम लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी आप सुन रहे थे राजा फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के

0: नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं।
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुदुवनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम।

0: राजा रवि वर्मा।
1: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: हाँ, अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई
3: हा?
4: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल, चल।
4: हाँ,
3: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: हाँ, चल, चल, चल,
1: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।

0: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोचू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
1: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
2: कहाँ है कोचू और मंगला है?
0: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की

0: बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं, राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है, इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
4: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
0: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सकें। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी।

0: उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 जून होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना भी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोजगार की मांग दर्ज कराई और जॉब कार्ड निर्माण तथा कार्यों में भाग लिया। विशेष शिविरों में मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों तथा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर

अम्बेडकर चेयर शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्व लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से

0: हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जाँच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
3: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
2: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

बाजीगर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में, रानी मलिक का लिखा हुआ गाना, अनु मलिक का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है, जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य

ये पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपेरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह, सागर की तरह गहरी आंखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहां पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानी

का कभी अंत नहीं। सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी, वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े

समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है, पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड। वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता, इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और उससे सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद जरूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंजर होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना, मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया। सदियों से बहता फिर भी ताजा लगता है, उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आजादी का एहसास है। देखने में अथाह अथाह और शक्तिशाली समंदर, फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीजों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है। कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है, तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज, जीव जंतु, संचार, परिवहन, देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली, अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है, तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज से जावेद अख्तर की बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है। सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकरा कर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहां पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहां आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीजों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर ये गाना फिल्म आया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें मन को विचलित न होने दे। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साथ, शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है, सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है, मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत, प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहां से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी। हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे। और हमारी बातें अधूरी रह गई, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पतकी और इला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है, जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है। आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के महल जैसा मालूम होगा।

छोटी बहना नाजू की काली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी।

घर सुना सुना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सुना सुना है। मन में झूम कहूंगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है। यहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है।

भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है। मैं हूं।

तो दोस्तों, जीवन में संतोष हमारे मन को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। तभी तो कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज

0: होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।

0: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
0: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
4: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
4: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक।

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगी?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहाँ से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाता है जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता
1: तो
2: है।
1: ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना आपको।

0: डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ
1: जी
0: गई है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे, वो भी वापस जवाब देता है। तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए। वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं
0: नहीं
1: करें,
0: करें
1: इसका ध्यान
0: बिल्कुल। और
1: रखना है।
0: बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो
1: जी
0: कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
1: जी
0: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का
1: जी
0: ख्याल रखें, अपने
1: बहुत
0: माता
1: सही
0: पिता का
1: कहा।
0: ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं,
1: जी
0: हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें,
1: बिल्कुल
0: बजाय ये लिखने की कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे।
1: जी
0: अब क्या करें हम,
1: अब गीत सुना दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहां की प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजें। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो
0: तो
1: हमने बता
0: बता ही
1: ही
0: दिया है, और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: दिया। और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस
0: वापस
1: नहीं
0: नहीं
1: आती,
0: आती।
1: तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
2: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश

दलकर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़े सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हांफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
1: रूप सुहाना लगता,
3: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या काँव काँव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना। ओहो।

0: हाँ हाँ हाँ इसीलिए।
1: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है, मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला?
0: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूं।
1: स्वामी हूं, स्वामी हूं, तुम बाहर के स्वामी हो, यहां इस घर में मेरा अधिकार है।
0: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ?
1: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
0: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब नहीं था, कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
1: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही

0: बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
1: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
2: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
1: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक, प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है, जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा

0: माँ के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है।
0: क्या बात
1: तो जब
0: है,
1: बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा हैं ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
0: जब आप ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
1: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी,
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार। और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है। जो
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने
1: जी।
0: संगीत तैयार किया
1: और
0: था।
1: देखिए ना, कुछ कहने वाले नहीं
0: अरे
1: हमें।
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम अगले
0: तपाक
1: विषय,
0: से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ
1: तपाक से बोलना हुआ
0: लेकिन कई
1: जी
0: बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है। और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया, तो
0: हाँ
1: उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है। लोग सोचते
0: नहीं,
1: हैं ये
0: कई बार
1: क्या
0: सही
1: किया
0: भी तो हो
1: इन्होंने,
0: जाता है,
1: कई बार सही हो जाता
0: जैसे
1: है।
0: अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया लेकिन आप घबरा
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो
0: गई
1: ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और
0: हाँ
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी
0: हाँ
1: कि मतलब वो
0: कोई अच्छी
1: जानबूझ के
0: बात
1: अपने,
0: जान बोल
1: हाँ
0: देते हैं, कोई जानकारी होती है
1: जी
0: और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ में बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आप में आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है। और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है। तो
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती अपने

0: बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई, तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है। मैं बोल देती हूँ, भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
1: बिल्कुल
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुभते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले, सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने ये बात लिख करके भेजी
0: और
1: है।
0: हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है
1: बिल्कुल
0: कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें, और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की पति
0: काफी
1: से।
0: विश्लेषण किया है
1: हाँ देखिए ना,
0: इन्होंने।
1: पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती हैं। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों
0: अच्छा, वैसे
1: पहुंचाऊं।
0: झगड़े के वक्त
1: जी
0: तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना,
1: बिल्कुल,
0: फटाफट फटाफट
1: वो
0: तपाक
1: जो
0: से।
1: तपाक से
0: ऐसे
1: फूटते
0: नॉर्मल
1: हैं।
0: बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और
1: तेजी से
0: फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही
0: तो
1: बात
0: ये
1: है,
0: क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: भरे
0: अंदर
1: बैठे होते होंगे
0: से
1: इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि
1: जी
0: तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
1: हमें आज
0: कल
1: ही
0: पे
1: कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा, और
1: जी
0: तपाक से,
1: जी
0: तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते हैं।
0: ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं कि बनाया भी है, कभी बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि
1: अभी तो नहीं
0: बना के
1: बनाया
0: खिलाया जाता है ना
1: अभी तो नहीं
0: सिर्फ बनाया
1: बनाया
0: नहीं जाता है
1: जी, वो तो मैं जानती हूँ आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप
1: हम
0: बना रही
1: आलू की
0: हैं?
1: खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी
0: बताइए।
1: सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, आधा छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए, और हरी मिर्च बारी कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और आधा छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच अमचूर, और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए, और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, आधा कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो, जो 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं

0: भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग, सौंफ और धनिया इसमें डालें। अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें। इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुने।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूँ, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है। और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिट इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है, कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटिसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है।
1: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है।

0: है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4 बार 5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं, फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है। थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले, देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप 1 के भी मिलते हैं, टाइप 2 के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप 2 मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप 1 कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं, ना कि सिर्फ

0: तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
1: तो
0: हैं।
1: कभी कोई
0: लेकिन
1: ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट राय ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
0: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है। तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है। तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है। और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
0: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
1: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज़ का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है? ये आप देखते हैं,
0: सही
1: पूरा
0: बात,
1: हिस्ट्री मालूम पड़ते हैं?
0: यस।
1: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
0: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: राइट, पेशेंट्स
1: वो
0: को
1: दूर हो
0: बहुत
1: जाता है।
0: टेंशन होती है।
1: अब देखिए, यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयां हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो
0: हाँ,
1: इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो

0: तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और इन्फेक्शन्स ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ से के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा?
1: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, गड़बड़ता आती है?
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज

0: और ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है। इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना।

0: डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। एक है जेनेटिक जो फैमिली से आता है, आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है?
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
1: सही
0: तभी
1: बात,
0: इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो।
0: जी
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: जी, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर।
0: जी
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है, जहाँ पे इमेज बनती है, उसे डैमेज होता है। पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है।

गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को

0: डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं। तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है।
1: ओहो
0: तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुटवेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है, लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाड्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाड्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि

0: कि मीठे के बारे में जो मिथ है खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है।
0: जी
1: स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
0: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
1: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
0: आइए सुनते हैं।

डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे

0: मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं और अब लीजिए हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या

0: क्या 75 है? ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोधरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 96 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। हाथियों से सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं ग्रामीण श्रोता बहनों और भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला गौरी बहनी राम राम जय जोहार करत हे। संगे संग जम्मो कार्यक्रम सुनैया मन के स्वागत करत हो भाई बहनी हो संगवारी हो। का बूता काम चलत हावय हमन तो आप मन संग बूता काम के संगे संग गोट बात करथन भाई। आप सब जानत हो राज्य

सरकार और केंद्र सरकार के अड़बड़कन योजना हावे है ना। तो आप मन का योजना के लाभ ले रहे हो और का के नहीं ले हो, हम तो आज आप मन से एक ठन योजना की चर्चा करबो भाई, जिन योजना के नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। सुरता आगी सो ही कतको संगवारी मन हमन लाभ तक ले डरे हो ही, कतको झन मन पछवाए हो ही। तो हम बताथन संगी हो, ये योजना राष्ट्रीय बागवानी कहते ओकरे से आप मन समझ सकत हो कि फल फूल है ना भाई, साग भाजी मसाला मशरूम औषधि पौधा और सुगंधित पौधा के खेती करो, एकरे बढ़ावा पर सरकार है ये मिशन ला चलेस। तो किसान भाई बहनी हुआ, श्रोता संगवारी हुआ, एकर से उत्पादन और गुणवत्ता ला बढ़ाए पर ये योजना ला चलेस। और संगी हो, किसान संगवारी मल्ला एकर से आय घलोक हो ही और रोजगार के अवसर बढ़िया बनी, संगे संग गुणवत्तापूर्ण पौधा और आधुनिक खेती तकनीक ला बढ़ावा मिली संगी हो, और कम पानी में ये खेती हो जाते तो पानी के संरक्षण घलोक हो ही है ना, सिंचाई संरक्षण खेती हो ही, और जैविक खेती ला बढ़ावा मिली। तो संगी हो, भाई बहनी हो, बागवानी फसल हा ऐसे फसल है जेकर उचित मूल्य आप मन पाहा, हमर कहे के मतलब ये कि कम भूया में ज्यादा उत्पादन आप मन ले सकत हो। दूसर बात, किसान भाई मन एके फसल के भरोसा नहीं रही, बागवानी फसल में का है, साग है, भाजी है, फल है, फूल है, ये कई प्रकार के उत्पादन मन कर सकत है। बागवानी मिशन ला जब एकर योजना के लाभ ले ही तो सरकार डहर ले एक तो सब योजना में मदद करते और इही योजना में सरकार हा मदद कर ही। तो संगवारी हो, बागवानी मिशन से ये योजना से आप मन जुड़ाओ और लाभ कमावा। एका एमा का हो ही, आप जैसे धान बो था तो धाने बोत चलत जाता, बदल बदल के फसल चक्र अपना हा तब माटी घलो खा, माटी की जिन उत्पादक क्षमता है वह बाढ़ी, और हमर अभी सरकार कहते है भाई माटी बचावा है ना भाई, तो काबर नहीं ये माटी बचावा अभियान में आप सब जन जुड़ाओ और बढ़िया बढ़िया उत्पादन लेवा। भाई बहनी हुआ, सरकार के जिन ये अभियान है तो माटी बचावा खेत बचावा यह बहुत जरूरी है संगी हुआ, काबर की अवैया पीढ़ी पर हमर खेत नहीं रही तो उन का खाही पीही है ना भाई, ये बात के चेत करा, माटी के उपजाऊ शक्ति ला बचावा, माटी जांच करावा, खातू के सही उपयोग करा और प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा संगी हुआ। सरकार घलो खाई ऐसन सब करे बर खेत बचाव कहते, और खेत तभे बाँची जब ये जिनिस मन हमन करबो, पानी बचत करबो, प्राकृतिक खेती जैविक खेती ला अपनाबो है ना भाई, नवा नवा खेती करे के तकनीक ला सीखबो, कम पानी में कैसे खेती होते, का फसल के उत्पादन ले सकत हन और सही तरीका ले खेती करबो भाई बहनी हुआ, तो हमर भूया हा बाँची, आप मन ला बहुत फायदा होही, माटी खराब नहीं होही, कम खर्चा में खेती हो ही, फसल के उत्पादन है ज्यादा हो ही और कमाई है बढ़ी संगी हुआ। तो आप मन जैसे सब योजना में आप मन जुड़ता वैसे माटी बचाओ अभियान तको में आप मन ला जुड़ना है और ज्यादा ले ज्यादा आय बढ़ाना है और सुख से जीवन बसर करना है संगी हुआ। चला हमन तो गोड़ बात करबोचे फिर ये संदेश ला सुन लेथन।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो भाई बहनियों, सरकार के जिन अभी अभियान चलत थे ओमा जम्मो श्रोता संगवारी भाई बहनी मन जुड़ा और खेत ल बचावा। हम तो यही कहबो भाई, जिन संगवारी मन नहीं सुने हुई ये अभियान ला तो बिल्कुल जान लो। हम अभी रोज दिन चर्चा करथन संगी हो। अब देखा, जब आप मन से गोट बात करथन तो आप मन ला कई प्रकार के फसल उत्पादन, साग सब्जी, फल फूल, जम्मो किस्म के

बात करता है ना भाई, कोई विशेषज्ञ मन से या तो जानकार मन के मन से या तो कोई ऐसे किसान भाई है जिन उत्पादन लेते ओकर गोट बात चर्चा करथन विशेषज्ञ मन से, जिन विशेषज्ञ मन जानकार रहते तेन मन सुग्घर सुग्घर चर्चा करते हमर संगवारी मन कर से चर्चा करके आप मन बर लाए रहते। तो सब प्रकार के खेती तो करथन, तो आज के हम भेंट वार्ता में आप मल्ला पपीता के उन्नत खेती के तैयारी और प्रबंधन, बिल्कुल पपीता के आपमन खेती ले

0: यह कैसे सुघ्घर चर्चा करे हे एला आप मन और हमन सुनबो।
1: किसान भाई हो, आज फोन के माध्यम से जुड़े थे श्री जोगेंद्र सिंह जी मन जनमन सहायक प्राध्यापक के कृषि विज्ञान केंद्र कटघोरा मा। आज उखर से जानकारी ले वो पपीता के उन्नत खेती के बारे में। सिंह साहब, आपके मर कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार। राम राम।
2: जय जोहार।
1: ये बता देवा, हमर छत्तीसगढ़ के बात करबो, बिलासपुर कोरबा जांगीर क्षेत्र के बात करबो, मुंगेली क्षेत्र के बात करबो, तो पपीता के खेती के का कैसन संभावना है सर?
2: पपीता खेती कर संभावना ये हवे भैया कि पूरे कहीं भारतवर्ष में कहीं भी पपीता लगाया जा सकते
1: जी।
2: सिर्फ कश्मीर मतलब जो ठंडा प्रदेश कर जो ठंडा प्रदेश है जैसे कश्मीर हो गए, हिमाचल हो गए, उतले छोड़ के बाकी पपीता की खेती कहीं भी किया जा सकते।
1: अच्छा।
2: और ये बिलासपुर संभाग में तो बहुत अच्छे से ही पपीता की खेती हम कर सकते हैं कि वो टाइप से जलवायु और एक भूमि जो है जो एक मांग है बहुत अच्छे से पपीता खेती कर सकते हैं बिलासपुर संभाग में।
1: तो एक बार खेत की तैयारी, भूमि के चुनाव हमर किसान भाई मतलब किसे करना चाहिए, विस्तार बताओ साहब।
2: सबसे पहले तो मैं जलवायु के बारे में बताऊं जो
1: जी
2: कि एक जो जलवायु मांग है वो पपीता उष्णकटिबंधी फसल है, जैसे कि जो गर्म जलवायु और आर्द्रता चाहिए जलवायु में
1: जी।
2: जो कि अच्छी तरह पपीता खेती में पपीता खेती विकसित होते हुए थे
1: जी।
2: और एक जो तापमान रहे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जो अत्यधिक टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंचे और ठंडी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाए
1: जी।
2: नहीं तो ओकर प्रति बहुत ही संवेदनशील रखते है। और गर्मियों में जो तेज हवा चलते है ओकर से भी थोड़ा हमन के बचाना चाहिए
1: जी, जी, जी, जी।
2: और हम जब हम मृदा का बात करबो तो मृदा में अच्छी तरह कार्बनिक मात्रा होना चाहिए और अच्छी जल निकास होना चाहिए, मतलब पानी 4 से 5 घंटा से ज्यादा पानी वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए।
1: मृदा के बाद जब चला सर तो ये बतावा एक तैयारी का उद्घाटन का हमार किसान भाई मन में अच्छा सड़े घुरुआ के खातुला मिझार सकते का?
2: बिल्कुल, एक जो खेत की तैयारी है सबसे पहले तो किसान भाई मन ला जैसे कि हमन साथ में हमन रोपाई की तैयारी करत हन तो एमा सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमन लग गर्मियों में एक बार गहरी जुताई कर देना चाहिए
1: जी।
2: एमबी प्लाउ रखे हो मैं गहरी जुताई कर देना चाहिए।
1: एक
2: बार फिर 2 से 3 बार कल्टीवेटर से चला देना चाहिए और एक बार रोटावेटर करके तैयार कर देना चाहिए। एक बार फिर उमा बेड बनाना चाहिए जो रीज फरोकत है वो टाइप से ऊंचा बेड बनाना चाहिए जो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो। और उमा फिर 3 से 4 ट्रॉली कम से कम 3 से 4 ट्रॉली गोबर खाद मिला देना चाहिए
1: जी, अच्छा है।
2: हाँ। एकर बाद फिर उमा का करना चाहिए कि हमन ला बेसल डोज जो हमर जो खातू रखे खातू यूरिया ओकर बड़ी कम से कम 50 किलोग्राम DAP 50 किलोग्राम यूरिया और 60 किलोग्राम पोटास
1: जी।
2: इला पर गड्ढा के हिसाब से हमला मतलब पूरा 1 एकड़ के हिसाब से हमला देना चाहिए
1: जी सर। जी सर।
2: और फिर ओमा फिर जो गड्ढा हम बनाथन ओला जैसे जो पूसा नन्हा वैरायटी है
1: जी
2: तो पूसा नन्हा वैरायटी पर हमन का करथन कि पूसा नन्हा वैरायटी बहुत हमन सघन लगाथन
1: जी।
2: और ओमा का करना है गड्ढा हमन के 50 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाना है, मतलब 50 सेंटीमीटर गहरा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा।
1: बढ़िया बढ़िया।
2: और दूरी रखना है 1.2 से 1.2 मीटर।
1: सर एक पहले हम जानना चाह वो हमारे किसान भाई मान अगर पपीता के व्यवसायिक खेती करना चाहते तो जिसे कोयम्बटूर हो गए, ताइवान है और जिन किसान में चुनाव करे के बाद हमारे किसान भाई मन नर्सरी तैयार करना चाहते तो कैसे तैयार करी, विस्तार ले जाना चाहो सर?
2: नर्सरी तैयार करे वो भैया हम किसान भाई मैं बताना चाहूँ
1: जी
2: कि ओकर सबसे पहले हमन क्यारी बनाबो।
1: हाँ।
2: क्यारी पहले 3 मीटर हमन लंबा लेबो
1: जी
2: और 1 मीटर चौड़ा।
1: हाँ।
2: और उमे कम से कम 10 से 12
1: जी
2: 10 से 12 क्यारी हमन बर पर्याप्त होही एक हेक्टेयर
1: हाँ,
2: बर।
1: जी
2: ओकर तैयारी में सबसे पहले हमन के

0: 10 केजी पर, 10 से 15 केजी गोबर
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: खाद पर क्या हिसाब से देना चाहिए।
1: जी
0: और साथ ही उन्हें ओमा का कहते हैं ट्राइकोग्रामा जो आते हैं,
1: जी
0: मतलब जैविक जैविक फंगिसाइड बोलते वाला, तो
1: जी
0: ओला 150 ग्राम,
1: हाँ
0: एक सौ
1: हाँ
0: पचास ग्राम मिला देना चाहिए।
1: जी
0: और हेमा कतार, कतार की दूरी जो रखते हैं नमन, 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए और दो से
1: अच्छा
0: तीन सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। और
1: हाँ
0: एमा जो जो ट्राइको ग्रामा रखे हैं बायो फंजीसाइड,
1: जी
0: मतलब जैविक जैविक फंजीसाइड
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: जैविक कवकनाशी बोला जाता होगा,
1: जी
0: तो और का काम करते हैं। जैसे स्टार्टिंग हमन नर्सरी नर्सरी देवो,
1: जी
0: तो नर्सरी में का होते कि डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी आते आद्र गलन जल रहा, सबसे ज्यादा नर्सरी स्टेज में ही आते होगा।
1: जी सर
0: तो ओला ओला हमन का कर कि ओला बचाए खातिर हमन ट्राइको ग्रामा ला डाल। किसान भाई मन से ट्राइको ग्रामा नहीं है तो साथ वो भी डाल सकते हैं,
1: जी
0: नीम खली भी डाल सकते हैं, दस से
1: हाँ
0: पंद्रह पंद्रह किलो के हिसाब से नीम खली डाल दें या नीम ऑयल पे स्प्रे कर दें, मतलब
1: जी
0: मिट्टी में ही मिला दें नीम ऑयल, या फिर कार्बेंडा जिम होते, मैंको
1: जी
0: जेब होते,
1: हाँ
0: ऊपर
1: हाँ
0: कम से कम 15 से 20 ग्राम पर बेड के
1: हाँ
0: हिसाब से मिला के मिट्टी में ओला मतलब मिक्स करके छोड़ देना
1: अच्छा
0: चाहिए उमा।
1: अच्छा सिंह साहब ये बताओ जिन किसान भाई मन आपके आवाज ला हमारा आवाज ला आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुना थे और पपीता लगा चुके हुई तो लगातार देखा तो गर्मी के स्थिति है बढ़त जाते उतरत जाते ऐसा में कहाँ का बात के ध्यान रखे हमारे किसान भाई मन
0: एमा सबसे पहले हमन ध्यान रखना चाहिए कि अगर अभी के हिसाब से देखा जाए हमला, तो ड्रिप का खेती सबसे सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा रहते हैं।
1: वाह वाह टपक सिंचाई
0: हाँ, टपक सिंचाई जल कहते हैं,
1: जी
0: क्योंकि अगर गर्मी सीजन में क्या होता है कि बहुत दिन का पानी पानी का समस्या हो जाते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो उनमें पानी तो आदमी ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे इरिगेशन नहीं कर सकते ज्यादा
1: हाँ फ्लड
0: मात्रा
1: इरिगेशन
0: में। हाँ,
1: पारंपरिक
0: फ्लड
1: हाँ
0: इरिगेशन
1: जी
0: जो पारंपरिक विधि से देते हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो पारंपरिक विधि से देने में क्या होता है पानी ज्यादा लगते हैं।
1: जी
0: तो इतना हमन ये कर सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमन सिंचाई कर सकते हैं।
1: जी
0: ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फायदा भी क्या होते हैं
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लेबर का कॉस्टिंग बच जाते हैं, और ड्रिप के माध्यम से डायरेक्ट डायरेक्ट जड़ में जाते हैं, बूंद के हिसाब से जाते हैं, तो ओमा का होता है पानी के बहुत बचत ज्यादा हो जाते हैं और
1: जी
0: पौधा भी बहुत अच्छा ग्रो करते हैं।
1: अच्छा। सिंह साहब ये बताओ बड़े बड़े पपीता के फल के तीर तीर देखन पेड़ के तीर तीर में दूध दही छिड़के कस दिखे वह का करे कल बहुत ज्यादा नुकसान होते एक लक्षण और समस्या का समाधान करा किसान भाई मुन के सर
0: एमा जो रोग लगते जैसे
1: जी अच्छा
0: पाउडरी मिल्यू कटे वाला जो दूध दूध कलर कलर का दिखते सफेद सफेद,
1: हाँ
0: तो पाउडरी मिल्यू कटे वाला
1: हाँ
0: एक ये रोग रोग रही थे, तो
1: अच्छा
0: ओकर बचाव हमन का करते हैं कि जो जो फंजीसाइड है कवकनाशी है
1: हाँ
0: ओकर, जैसे ही हमन ये दिखते कि मतलब हमन के देखना चाहिए कि जैसे ही दूध टाइप से पत्ता में आते या फिर फल में आते,
1: जी
0: तो ओकर बाद तुरंत हमन ला कार्बेंडा जिन या फिर होइस मैंको जेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
1: जी
0: जो भी फंजीसाइड है
1: हाँ
0: हमन
1: हाँ
0: ला तुरंत स्प्रे, या फिर सल्फर डस्ट,
1: अच्छा
0: सल्फर डस्ट ज्यादा अच्छा रहते ला कंट्रोल करे में, या फिर कैराथन
1: हाँ
0: करके आते एक दवाई
1: जी
0: ओला हमन
1: हाँ
0: 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमन स्प्रे करब तो वह कंट्रोल हो
1: हाँ
0: जाते।
1: सारे मैं कीड़ा धरो लगते का पपीता खेती में हाँ
0: हाँ, कीड़ा कीड़ा भी एमा लगते भैया,
1: बताओ
0: एमा जो कीड़ा लगते वो फ्रूट फ्लाई भी लगते, एमा एफिड भी
1: जी
0: लगते जिला
1: जी
0: माहू कैसे
1: हाँ
0: व्हाइट
1: माहौ
0: फ्लाई भी लगते,
1: हाँ हाँ
0: और तो इस रेड स्पाइडर माइट भी लगते, तो
1: जी कीड़ा
0: ये सब जो रोग जो कीट कीड़ा
1: लगते हैं
0: लगते। हाँ, एला कंट्रोल करने से एफिड है व्हाइट फ्लाई है, तो
1: हाँ
0: यह का काम करते कि यह वायरस फैला देते,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: एक बार वायरस फैला देते समय समझ लिया कि पूरा क्या बोलते हैं पूरा खेत का नुकसान हो गया समझ और
1: जी
0: पपीता कर,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: एला कंट्रोल करे बर हमन डाइमेथोएड आते
1: हाँ
0: इमिडाक्लोर पड़े
1: जी
0: ओला हमन एक स्प्रे कर सकते हैं 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एला स्प्रे
1: हाँ
0: करके कंट्रोल कर
1: अच्छा
0: सकते हैं,
1: तो
0: लेकिन
1: व्यावसायिक
0: तुरंत
1: खेती के बाद
0: कंट्रोल।
1: जब चलत थे सिंह साहब तो हमारे किसान भाई मन बहुत कर रहे पपीता खेती का थे उन बतावा फूल आए के अवस्था में कहो पर फूल गिरिया थे का विशेष सावधानी हमारे किसान भाई मन रखे जे कल उंगला ज्यादा नुकसान मत हुए
0: फूल गिरे

0: फुल जेडे कर एक ही कार्ड नहीं हवे, दो तीन कार्ड होते, जैसे कि जैसे रोग लग जाते तो रोग मा रोग लगते तो ऑटोमेटिक फूल झड़े लगते।
1: जी
0: एक बाद सेकंड कारण है कीड़ा लगे कर,
1: हाँ,
0: तो कीड़ा भी लग जाते तो कीड़ा ही फूल झड़े लगते।
1: जी जी जी।
0: एक अलावा
1: हाँ,
0: कुछ तत्वों की कमी भी हो जाते ओकर वजह से भी,
1: हाँ,
0: मतलब जो भी न्यूट्रिशन को कमी हो जाते एक से हमन ला इनमें का करना चाहिए,
1: हाँ,
0: कि माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 से 12 kg पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगर अगर ओमा नहीं रुकत है तो एक तो आते एनए एसिटिक एसिड बोलते होला, ओकर अगर हमन स्प्रे करब तो ओमा कंट्रोल हो जाते।
1: अच्छा अच्छा। हमारे कार्यक्रम के समय किसान भाई मन ले बता देवा बहुत कर रकबा ओमन अगर पपीता के खेती करत है और उत्पादन बढ़िया हाथे और जिससे पपीता टोलिंग था सोचे बाजार में लेके बिद थे श्रेणीकरण के का कैसे महत्व सर जिकल बाजार में मांग कर बढ़िया रहे।
0: सबसे जो अच्छा अच्छा वैरायटी आजकल जो चलन में है
1: जी,
0: तो रेड लेडी बहुत अच्छा वैरायटी है जो कि जेकर बाजार बाजार मांग बहुत ज्यादा बहुत बहुत अच्छा है
1: जी।
0: और एमा जो श्रेणीकरण होते
1: हाँ,
0: वो ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड के हिसाब से, अगर अगर हम ज्यादा बड़े साइज का लेबो इन ज्यादा बड़े साइज का ज्यादा अच्छा मार्केट डिमांड है ओला हम जैसे हम छत्तीसगढ़ से बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर विदेश में सप्लाई कर सकते हैं।
1: तो एकर मांग हवा सर बढ़िया बाजार में,
0: एकर बाजार में बहुत अच्छा मांग है, साल भर मांग रही थे क्योंकि पपीता एक ऐसा फसल है जो जैसे बहुत कम छोटा जमीन में कर सकते हैं, कम समय में हो तैयारी हो जाते, कम रकबा भी हम कर सकते हैं, अधिक उत्पादकता भी है पर एकड़, जैसे हम अगर पर हेक्टेयर की बात कर जाए 40 टन प्रति हेक्टेयर या फिर 80 टन भी आजकल बहुत सारे किसान भी 80 टन के हिसाब से पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। तो एकर पूरा साल भर पूरा बाजार में केला के बाद सबसे सबसे ज्यादा डिमांडिंग में रखे रहते
1: हैं। वाह वाह, मतलब छत्तीसगढ़ पपीता के फल के टुकना के रूप में विकसित हो सकते हैं, एक कहना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: का प्रमुख बात रखना चाहते हो साहब
0: पपीता पर? सबसे पहले तो प्रमुख बात है, सबसे पहले तो हमन ला ध्यान रखना चाहिए
1: जी
0: कि जो हमन ला जो भूमि का चयन करना चाहिए
1: जी,
0: तो भूमि का चयन बड़ी जो सावधानी रखनी चाहिए, हमन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमन ऐसा खेत का चुनाव करना चाहिए जो कि पानी ना भराव स्थिति में ना हो,
1: पानी निकासी के समुचित व्यवस्था पहले रखना चाहिए कहना चाहता,
0: पहला रखना चाहिए
1: जी।
0: सेकंड हमन ये देखना चाहिए कि आजकल जो ज्यादा रकबा में लगा थे, ज्यादा रकबा में लगा थे तो हमन के थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा देखना चाहिए कि मार्केट हमन ज्यादा अवस्था में लगा दे, लेकिन हम
1: बाजार व्यवस्था देखना जरूरी है,
0: बाजार व्यवस्था बहुत देखना जरूरी है।
1: वाह वाह।
0: तीसरा हम ये देखा कि एमा मल्चिंग का व्यवस्था बहुत जरूरी है, कि मल्चिंग जो रही थे वह का होते कि वो वीड कंट्रोल, जैसे जो खरपतवार है उकर भी उकर कंट्रोल करते, पानी जमीन में क्या है नमी बनाए रखते।
1: चला सिंह साहब, आज हमारा फोन के माध्यम से जुड़ के हमारे किसान भाई मतलब पपीता के खेती के उन्नत खेती के बारे में विस्तार जानकारी दे है, निश्चित रूप से आप मन के देह जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के समय किसान भाई मन फायदा उठाई, इतने कम समय दे आप मन आकाशवाणी ला, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार, राम राम।
0: राम राम भैया, धन्यवाद भैया।
2: भाई बहनी हो, अभी आप मन सुनत रहे भेंट वार्ता पपीता के उन्नत खेती तैयारी और प्रबंधन, जानकार रहीन योगेंद्र सिंह, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा के। अब गोट बात करत रहे हैं हमर राजू भैया मन फुरिया के एक ठन बात ला पूछी ने, है ना भाई? तो आप मन सुन के जरूर लाभ लेहा, पपीता खेती करिया। अब आप मल्ला कार्यक्रम संबंधी एक ठन सूचना बता थन, छेद करके सुनिया भाई। हर गुरुवार शुक्रवार के संझा 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम प्रसारित होते, जेमा हमर श्रोता संगवारी भाई बहनी किसान भाई बहनी मन कुकरी मुर्गी पालन है, मछली पालन है, गाय गरुआ पशु पालन है और कृषि उत्पाद ले संबंधित जेन भी समस्या रिथे और यहाँ तक के अपन शरीर के स्वास्थ्य के जेन

समस्या रिथे एकर समाधान पाए बर विशेषज्ञ मन में जानकार मन में फोन में सवाल पूछते और समाधान पाते। इही कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 के स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी जी मन उपस्थित रही। इकर संग बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक सवाल पूछे एक बार जिन विषय हो ही ओला चेत करके सुना संगवारी हुआ। पहली बेरा में जिन प्रश्न पूछिया तेकर विषय है धान फसल मा नील हरित काई औ भूरा खाद के उपयोग। धान फसल मा नील हरित काई औ भूरा खाद के उपयोग। और दूसरिया जिन बेरा है ओ है 11:30 एकर विषय है जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना। दूसरिया विषय काय संगी हो जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना। ये विषय ले संबंधित जेन भी समस्या है आप मन के जेन भी जिज्ञासा है मन है उकर समाधान पाए बर फोन नंबर है 2665992। फोन लगाए के पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड नंबर हावे 07752। एला जरूर लगा ले है संगी हुआ इसन फोन नहीं लगी। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 के आप मन सुन सकत हो है ना भाई। तो ये तो हो गए कार्यक्रम संबंधी सूचना विषयला आप मन सुने हो औ दोहराबो तो आप मन लिख घलोक लिहा। अब काबर नहीं भाई सुग्घर कस एक ठन गीत सुन लेथन जेला गाए है कमल सिंह राजपूत और छाया शर्मा मन। ये सुग्घर गीतला सुनथन।

0: એ સુઘર ગાત ગીત લગાવીને છાયા શર્મા ઉ કમલ સિંહ રાજપૂત ભાઈ બહેની હવા ફોન ઇન કાર્યક્રમ કે આપ સંજા 5:05 से लेके 5:35 के बीच में आप मन सुन सकत हो फोन जरूर लगा हा, फोन करे पर झन भूला 11 जून के अब 12 जून के आप जिन फोन कर रही है ओकर सवाल के समस्या के समाधान आप मन सुन सकत हो है ना भाई फोन जरूर करिए। अब आप मन ले चलत हन मंडी मौसम को थी तो आज के अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। बाजार भाव कहबो तो बिलासपुर मंडी में बरबट्टी है 2800 ले 3000 रुपया, करेला है 3000 ले 3200 रुपया, लौकी है 2000 ले 2200 रुपया, रमकेलिया है 2000 ले 2200, आलू है 18 ले 2000 और गोंदली है 1000 ले 1200 रुपया है संगी हुआ। और तखतपुर मंडी में धान महमाया 2000 है और कोटा में धान महमाया है 1700 है, जयराम नगर में धान सरना है 1900 रुपया प्रति कुंटल है और जयराम नगर में धान MTU 1010 हावय 1900 रुपया प्रति कुंटल। एकरे संग हमार बेरा हो गए संगी हो गए तो देवा गौरी बहनी ल घर जाए के विदा। राम राम जय जोहार।
1: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 5:35 हुए हैं और अब लीजिए हम प्रसारित कर रहे हैं युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत।

युवा जगत सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों का आपके दोस्त मनीष का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय जोहार। और बताइए कैसे हैं आप सभी? घर पे रेडियो सुनते हुए कहीं आप पके हुए आमों का तो मजा नहीं ले रहे, या मजा ले रहे हैं रसीले जामुनों का जिसे खाने के बाद हमारी जीभ अक्सर नीली हो जाती है

और हमारे साथ खाने वालों के चिढ़ाने के काम आती है। देखो कितनी नीली जीभ हुई है हमारी। वाकई कितना अद्भुत है ना मौसम और ये प्रकृति के तोहफे। साथियों इसी के साथ मुझे गाना याद आ रहा है कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। कितना सुंदर गाना है ना। जावेद अख्तर साहब ने क्या खूब लिखा है कि नायिका की वो नीली आंखों की खूबसूरती उन्होंने समुद्र से की है। और भी बहुत सारी नीली चीजें हैं हमारी दुनिया में, जैसे नीला अंबर, नीला आसमान, नीला पानी। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का रंग नीला क्यों होता है? तो दोस्तों आज हम इसी नीले समुद्र के बारे में बात करेंगे और हम बात जानेंगे कि आज विश्व समुद्र दिवस पर क्या उपयोगिता है हमारे समुद्र की और महासागरों की। तो साथियों अगर समुद्र एक दिन सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाए तो वह क्या लिखेगा? शायद यही कि सबकी प्यास बुझाता हूँ, सबका मौसम बनाता हूँ, लेकिन यार थोड़ा मुझे भी साफ रखा करो। समुद्र यानी धरती का वह नीला जादू जो बिना कुछ कहे हमारी जिंदगी को हर पल आसान बनाता है। कहते हैं अगर धरती एक शरीर है तो महासागर उसका धड़कता हुआ दिल है। ये बादलों को जन्म देते हैं, बारिश भेजते हैं, मौसम को संतुलित रखते हैं और ये हैं करोड़ों जीवों के घर। लहरों की कहानी में जीवन का सार है। सागर नहीं सिर्फ पानी ही प्रकृति का उपहार है। दोस्तों सोचिए हम में से कितने लोग समुद्र के किनारे रहते हैं? शायद बहुत ही कम, लेकिन फिर भी हमारी हर दूसरी सांस कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ी हुई है। यानी समुद्र कह रहा है तुम बिलासपुर में रहो या दिल्ली में, सांस मेरी ही बदौलत ले रहे हो मेरे भाई। लेकिन अफसोस जिस समुद्र ने हमें इतना कुछ दिया, हम उसे प्लास्टिक के कचरे और प्रदूषण का तोहफा दे रहे हैं और समुद्र चुप है, बिल्कुल उस माँ की तरह जो बच्चों की गलती पर भी मुस्कुराती रहती है। नीली चादर ओढ़े बैठा सागर बड़ा महान, जीवन का संदेश सुनाता बनकर मौन विधान। लहर लहर में गीत है इसके, बूंद बूंद में प्यार, इसको स्वच्छ बचाना होगा, है ये हम सबका दायित्व अपार। दोस्तों इस विश्व समुद्र दिवस पर आप बस इतना याद रखिए कि हम कचरा कम करेंगे, प्लास्टिक से दूरी बनाएंगे और प्रकृति को केवल संसाधन नहीं अपना परिवार मानेंगे। सागर की हर लहर ने हमको ये समझाया है, प्रकृति का जो मान रखे उसने ही भविष्य को सजाया है। तो साथियों अब बढ़ते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे लिया गया है फिल्म बैंग बैंग से। गाया है बेनी दयाल और नीति मोहन ने, संगीत है विशाल शेखर का और गीतकार है विशाल ददलानी जी।

0: तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ गए हैं। इसी के साथ साथ महंगे हुए हैं बहुत सारी चीजें, जिससे जैसे बाहर के खाने के दाम महंगे हो गए हैं, सिलेंडर की भी बहुत मारामारी है। लेकिन मुझे पता है साथियों कि आप सभी बहुत स्मार्ट हैं और बहुत ही होशियारी के साथ आप सभी इस संकट की घड़ी में बहुत सारे तरीके आजमा रहे होंगे। तो ऐसे ही स्मार्ट छात्रों से हम आज एक क्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बात करेंगे, जहां हमारी आज बात हो रही है गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एमएससी फाइनल ईयर के छात्रों के उनके शोध कार्यों में उनसे हुई विशेष बातचीत। साथियों, हमारे आज के क्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम आप पहुंचे हैं गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर में, और हम यहां आज बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर उषा राठौर है। मैं गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ।
0: मैम, हमें पता चला है कि आपके कॉलेजेस में विज्ञान से जुड़ी हुई अनेक अनेक रोचक चीजें और गतिविधियां, शोध या रिसर्च भी होते रहते हैं।
1: जी मनीष जी, आपने सही सुना है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक शिक्षक के रूप में यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे एमएससी के विद्यार्थियों ने कुछ नवाचार और अच्छे कार्य हमारे यहाँ किए हैं।
0: आपके गाइडेंस के अंदर जितने भी हो रहे हैं रिसर्च कार्य हैं, मैं उन सभी छात्रों से मिलूंगा, और लेकिन सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपके यहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं।
1: जी जरूर, हमारे यहाँ विद्यार्थियों ने कंप्यूटेशनल फिजिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय और

0: नवाचारी कार्य किया है। यह शोध केवल शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और मानव कल्याण से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज पूरी दुनिया मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, विशेषकर बढ़ते डिप्रेशन को लेकर चिंतित है। हमारे विद्यार्थियों ने इस गंभीर विषय को समझते हुए ऐसे सेंसिंग एप्लीकेशंस पर कार्य किया है जो भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जैविक संकेतकों की पहचान और निगरानी के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने पर्यावरण और कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे सेंसिंग मटेरियल्स और एप्लीकेशंस पर कार्य किया जो हानिकारक गैसों का प्रभावी रूप से पता लगाने में सहायक हो सकते हैं। इन सभी कार्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें वैज्ञानिक सोच के साथ साथ नवाचार भी दिखाई देता है। विद्यार्थियों ने केवल समस्याओं का अध्ययन नहीं किया, बल्कि मॉडर्न कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए उनके संभावित सॉल्यूशंस खोजने का प्रयास किया है। यही नजरिया भविष्य के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की पहचान होती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ इनोवेशन, क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ें। आज के समय में सिर्फ किताबों का ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नए विचारों के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से हमने समय समय पर हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, साइंस एक्टिविटी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंटेशन जैसी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इनमें विद्यार्थियों को सीखने, अपने विचार साझा करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है। मेरा मानना है कि जब पढ़ाई के साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन जुड़ जाते हैं, तब सीखना और भी प्रभावी और आनंददायक बन जाता है। हमें खुशी है कि हमारे विद्यार्थी इस दिशा में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतने अच्छी बातें बताई कि आपके कॉलेजेस में आपके छात्र जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके छात्रों से भी बातचीत करते हैं।
2: सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: आप अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार, मेरा नाम भूमिका सिंह राठौर है और मैं एमएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ।
2: अच्छा भूमिका जी, फाइनल ईयर में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, और यह आपके क्या बोलते हैं करियर के सबसे प्रभावी, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है आपका। अभी कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई, इस बारे में बताएं।
3: अच्छी चल रही है, हमारे एग्जाम भी हो चुके हैं और हमें बहुत कुछ सीखने भी मिला है और इस रिसर्च में काम करने के।
2: अच्छा, तो आप किस विषय पर काम कर रही हैं या फिर किस क्या है आपका टॉपिक, आप हमें बताएं।
3: मेरा टॉपिक है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी पे मैंने बेसिकली काम किया है, जिसमें मैंने एक कॉपर इंजीनियर्ड ग्रेफीन जिसको हमने क्योटो ट्रैप की तरह यूज किया है।
2: अच्छा, तो ये जो कॉपर इंजीनियर्ड ग्रेफीन है वह क्या काम आता है?
3: हाँ, तो सबसे पहले हम ये काम आने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा प्रॉब्लम क्यों है जिसकी वजह से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, फ्यूल बर्निंग, सी लेवल और ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये सब इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो जो अभी के साइंटिस्ट है वो ये मटेरियल सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम इफेक्टिवली कैप्चर कर सकते हैं। तो वही इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए मैंने ये ट्राई किया है कि मैं एक ऐसा मटेरियल बनाऊं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इफेक्टिवली कैप्चर या अब्सॉर्ब कर सके। आने वाले समय में कार्बन कैप्चर या गैस सेंसिंग मटेरियल, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, ऐसी सब टेक्नोलॉजी में बहुत यूजफुल काम है।
2: यानी कि आप एक अभी से ही एक जूनियर साइंटिस्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं।
3: ऐसी कोई बात नहीं, बस कोशिश है कि कुछ अच्छा कर पाए, बाकी तो जैसा हो जैसा किस्मत हो।
2: अच्छा, और इस विषय पर काम करके आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
3: जी, कि सबसे पहले जो मटेरियल मैंने चूज किया था उसकी जो अब्जॉर्प्शन एनर्जी थी वो बहुत कम आ रही थी। इसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे सिस्टम को बनाने के लिए। तो मैंने इसमें एक मटेरियल जो कि कॉपर है उसकी डोपिंग की, और उसकी डोपिंग करने से मेरे मटेरियल की जो एफिशिएंसी थी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने की वो बहुत अच्छे से राइज हुई, और बहुत कुछ सीखने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटेशनल काम है तो कंप्यूटर के लिए जो कोडिंग वोडिंग थी यहाँ पे भी मुझे कई परेशानी हुई, लेकिन समहाउ ये सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके धीरे धीरे इस काम के, और ये काम पूरा हुआ है आज।
2: बिल्कुल, आपने फिजिक्स में एमएससी कर रही हैं और आप अभी अभी अपने इतना अच्छा शोध कार्य भी अपना कर रही हैं, तो

0: आगे आपके क्या एस्पिरेशंस हैं?
1: तो मैं आगे अपने काम को बढ़ाऊं और आगे कुछ ऐसा कर पाऊं और इससे मैं कुछ हेल्पफुल करूं और अपना भी एक नाम कमा सकूं कि मैंने कुछ किया है, जैसे कि पेपर पब्लिशिंग और या फिर कोई अपने नाम से पेजेंट कराना, ऐसा सब कुछ है मेरा कि मैं आगे ही फिजिक्स के फील्ड में आगे बढ़ पाऊं।
0: अच्छा, तो हम आशा करते हैं कि आपका जो शोध रहे वो बहुत सफल रहे, आप अपने भविष्य में ऊंचे मकाम को प्राप्त कर पाए ताकि और भी सक्सेसफुल बन सकें। और
1: धन्यवाद मनीष जी,
0: हाँ, और
1: बहुत धन्यवाद
0: हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमारी दूसरी साथी जुड़ चुकी हैं, आप अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम दीपाली मंडावी है, मैं एमएससी फिजिक्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी साइंस कॉलेज बिलासपुर से पढ़ाई कर रही अपनी।
0: अच्छा, तो क्या विषय है आपका, कौन से टॉपिक पे आप रिसर्च कर रही हैं?
2: मेरा प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूरिन एब्जॉर्प्शन ऑन WSE2 मोनोलेयर फॉर डिप्रेशन रिलेटेड बायोमार्कर सेंसिंग है।
0: अच्छा, तो ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है फ्यूरिन एब्जॉर्प्शन, ये किस काम आता है या फिर ये क्या होता है, हमारे साथियों को बताएं।
2: इसका एप्लीकेशन मैं बताती हूँ आप सभी को। मेरे प्रोजेक्ट का मेन एप्लीकेशन स्मार्ट गैस सेंसर बनाना है।
0: अच्छा,
2: हमारी बॉडी से सांस और स्किन के थ्रू बहुत से केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं
0: जी।
2: अगर इन कंपाउंड्स को जल्दी डिटेक्ट कर लें तो हम लोग बहुत सारे बीमारियों से हम लोग पहले ही बचाव कर सकते हैं। अगर उसके बारे में हमको पता चल गया तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट पहले ही स्टार्ट कर देंगे
0: जी जी।
2: जैसे डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन अभी के जनरेशन में बहुत ज्यादा ही हो रहा है लोगों को, अभी के यूथ को बहुत सारे इशू के कारण, फैमिली इशू या स्टडी प्रेशर के कारण, तो इसके मदद से हम लोग पहले ही हम लोग डिप्रेशन या कोई भी हेल्थ कंडीशन के बारे में जान लेंगे तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे।
0: अच्छा, यानी कि हाँ, जैसे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हमारे शरीर से ऐसे बहुत सारे रासायनिक क्रिया होती हैं जो आप अपने बायो मार्कर्स के थ्रू डिटेक्ट करके आप लोगों को एक सही इलाज देने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ,
2: और जैसे वैसे इससे कुछ हेल्थ कंडीशन से जुड़े जैसे बहुत सारे बायो मार्कर्स को हम लोग बिना ब्लड टेस्ट किए बिना ही आसानी से हम लोग पहचान लेंगे।
0: अरे वाह, यानी कि बिना किसी सुई चुभोए या फिर बिना किसी दर्द के हम कोई भी ये टेस्ट से हम डायग्नोस कर सकते हैं बीमारी को।
2: हाँ।
0: अरे वाह, आप तो बहुत इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम ला रही हैं दीपाली जी।
2: धन्यवाद मनीष जी। और सिर्फ हेल्थ कंडीशन नहीं, बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या फूड क्वालिटी चेकिंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी काम आ सकता है ये।
0: यानी कि आपकी जो शोध है, आपकी जो रिसर्च है, उसका बहुत एक वाइडर एप्लीकेशंस है।
2: धन्यवाद मनीष जी।
0: तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ पे तीसरी छात्रा और हम उनका नाम जानते हैं।
3: मेरा नाम श्रुति साहू है और मैं साइंस कॉलेज में एमएससी फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ।
0: कैसा रहा आपका फाइनल ईयर अभी तक?
3: काफी बेहतरीन रहा, बहुत सारी चीजें हमने सीखा, सेमेस्टर एग्जाम्स, इंटरनल प्रैक्टिकल्स, ये तो अपनी जगह है ही, साथ में हमने और भी वर्कशॉप, इंटरनेशनल कॉलेजियम प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, ये सब दिए हैं जो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए सहायता था। तो इस तरीके से काफी बेहतरीन रहा मास्टर्स का जर्नी।
0: और मास्टर्स की जर्नी, जिस तरह आप साइंस कॉलेज में हैं, विज्ञान की आप छात्रा हैं, तो आप हमें यह बताइए कि आपका जुड़ाव साइंस के प्रति कैसे हुआ और आपने ये विषय क्यों चुना?
3: अच्छा, तो अभी मैं अगर बताऊं कि साइंस के प्रति मेरा जुड़ाव कैसा हुआ तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम टेंथ के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें साइंस स्ट्रीम चुनना है
0: जी।
3: तो उस टाइम ऐसा था कि हमारे एक फिजिक्स के सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरीके से लाइट है, लाइट 50 हर्ट्ज उसकी स्पीड है, मतलब क्या होता है उसका कि एक सेकेंड में वो 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है, मतलब इस तरीके से उन्होंने समझाया हमें फिजिक्स को, कि इतना इंटरेस्ट जगा मुझे उस टाइम पे कि साइंस के प्रति रुझान ऐसे बढ़ा, फिर उसी में आगे अभी बढ़ रही हूँ।
0: और यही रुझान आपको लेकर पहुंच चुका है आपके अंतिम पड़ाव पे कॉलेज के, और जहां पर आप कर रही हैं एक शोध कार्य, इस विषय बारे में आप हमें कुछ बताएंगी कि आप क्या विषय पर शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं?
3: हाँ, एमएससी लास्ट सेमेस्टर में हमारे लिए एक प्रोजेक्ट होता है जो हमारे सिलेबस में है
0: जी।
3: मेरा विषय था NH3 एडसॉर्प्शन ऑन नॉन मेटेलिक सब्स्टिट्यूशनल 3 डाइसल्फाइड मोनोलेयर्स, अ DST अप्रोच। बेसिकली ये ऐसा काम था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती कृषि, तो अच्छी फसल

0: के लिए किसान कई प्रकार के उर्वरकों का यूज करते हैं,
1: जी
0: जिनमें अमोनिया आधारित उर्वरक भी शामिल है।
1: हम्म।
0: लेकिन जब हम इसका जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो मिट्टी और पर्यावरण, ह्यूमन हेल्थ के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो ज्यादा मात्रा में अमोनिया मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता को प्रभावित करता है और वातावरण को प्रदूषित करता है।
1: जी
0: तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि किसी क्षेत्र में अमोनिया की मात्रा कितनी है और
1: हम्म।
0: उसे समय रहते कैसे पहचाना जाए। तो
1: अच्छा
0: इसी को सोचते हुए मैंने अमोनिया को सेंस करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उस पे काम किया है। तो
1: अच्छा
0: मेरे काम में ऐसा है कि 3-डाईसल्फाइड एक मटेरियल है
1: हम्म।
0: जो 2-डाइमेंशनल मटेरियल है। तो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज करके मैंने ये समझने का कोशिश किया कि ये मटेरियल अमोनिया को कितने पॉसिबिलिटीज से, कितने प्रभावी ढंग से पहचान सकता है।
1: अच्छा
0: अगर इस पे हम और बेहतर काम करेंगे तो इसका सीधा सीधा संबंध कृषि और पर्यावरण से ही होगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में हम ऐसे सेंसर बनाएं और ऐसे सेंसर विकसित करें तो किसान को उर्वरक के बेहतर उपयोग को समझने में, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में ये हेल्पफुल हो सकता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में भी यूजफुल होगा। तो
1: जी
0: इस तरीके से ये यूजफुल होगा।
1: बहुत ही अच्छा रिसर्च है आपका, क्योंकि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है अगर ये हमें पहले से पता हो तो हम अपने मनपसंद जो भी फसल लेना चाहते हैं ये हम पहले से निर्धारित कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई आपकी जो आपकी रिसर्च है उससे बहुत फायदेमंद उन्हें साबित होगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस रिसर्च में उपलब्धि हासिल की है, और आपका जो ये रिसर्च कार्य है आगे हमारे समाज में और मानव कल्याण के लिए उपयोगी साबित हो, और आपको आपके बेहतर और उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी थैंक यू।
1: तो साथियों हमारे साथ जुड़ गई हैं एक और छात्रा जो कि तो साथियों हमारे साथ जुड़ गई हैं एक और छात्रा जो कि अपने ही एक और रिसर्च और इनोवेशन पे काम कर रही हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वह किस विषय पर काम कर रही हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
2: नमस्ते मनीष जी। मेरा नाम आकांक्षा कोसले है और मैं साइंस कॉलेज की एमएससी फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ।
1: अच्छा कांचा जी, आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है और आपने कुछ शोध कार्य भी किए हैं, उस विषय पर तो बताइए हमें।
2: जी मनीष जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जो है गैस सेंसिंग एप्लीकेशन पे काम किया है।
1: हाँ
2: जैसे कि सब जानते हैं अभी के टाइम पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हार्मफुल है हम लोग के लिए, ये हमारे हेल्थ इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसी को देखते हुए मैंने गैस सेंसिंग एप्लीकेशन पे काम किया है। इसमें मैंने एक नए मटेरियल की सेंसिंग कैपेबिलिटी पर अध्ययन किया है जिससे हमें ये पता चल सकते हैं कि उस एरिया में कितनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस हैं, उसकी मात्रा कितनी है। इससे हम वहाँ के पॉल्यूशन, जो गैस पॉल्यूशन है, उसको हम डिटेक्ट करके समय पर हम उसकी जानकारी लोगों को दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इस आइडिया का विचार आपको कैसे आया कि मुझे इस दिशा में कार्य करना चाहिए, इसके लिए आपने कितनी उठा पटक की?
2: दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको देख के मेरे को ये आइडिया आया था कि मैंने अपने गाइड से इसके बारे में पूछा कि क्या हम इसमें वर्क कर सकते हैं, ऐसा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया कि हाँ, हम कंप्यूटेशनल मेथड की मदद से हम इस फील्ड में वर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा, आप भौतिकी के छात्र हैं और आपने इस शोध कार्य से आपने ये भी बता दिया कि आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं, कि आप सिर्फ छात्रा ही नहीं बल्कि एक क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की स्टूडेंट हैं जो कि क्यूरियस हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट या फिर हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है आप उससे सॉल्व करने की भी एक जिज्ञासा रखती हैं। तो हम आपके उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना करते हैं आकांक्षा जी, और हम आपसे बातचीत करेंगे फिर अगले किसी और क्रम में। तब तक आप हमें ये बताइए कि आप हमारे युवा साथियों को जो विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ नए इनोवेशंस करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विषय है ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है। तो ये इसमें आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट डायरेक्शन बहुत अच्छा है।
1: तो आकांक्षा जी, आपकी महत्वाकांक्षा ऐसे ही पूरी होते रहे और लोग आपसे जुड़ते रहें और आप ऐसे ही रिसर्च और इनोवेशंस करते रहें, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू मनीष जी।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गवर्नमेंट ई राघविन राव PG साइंस कॉलेज बिलासपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट के MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ उनके शोध कार्यों पे विशेष बातचीत। साथ ही हमारे फोन करे गीत सुने की रिकॉर्डिंग होगी इस हफ्ते शुक्रवार 12 जून 2026 को सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमें फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 07752266592। मैं फिर से नंबर दोहराता हूँ, हमारा फोन नंबर है 07752266592। तो साथियों, हमें ढेर सारे कॉल करें और अपने पसंद के गाने हमें बताएं। साथ ही आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ईमेल के माध्यम से हमें बताएं। हमारा ईमेल आईडी है yj.ar.bilaspur@gmail.com। तो साथियों, तुम चलो तो रास्ते भी कारवां बन जाएंगे, तुम बढ़ो तो मुश्किलों के आसमां भी झुक जाएंगे। युवा हो तुम, तुम्हारे हाथ में है कल की तस्वीर, तुम समर जाओ तो देश के सपने भी समर जाएंगे। तो इसी के साथ दीजिए अपने रेडियो साथी मनीष को इजाजत और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार, सयो नारा। और सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अभी युवा जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला किसान सशक्तिकरण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 7:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 हम आपको सुनवाएंगे कलाकार मोहित चौहान के गाये गीत। रजनीगंधा कार्यक्रम हम पेश करेंगे रात 8:15 पर। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:20 पर और फिर संध्या 7 से। श्रोताओं, हम विविध भारती के कार्यक्रम रिले करेंगे रात 9:15 से। ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और अब एक नजर हमारे केंद्र से कल यानी मंगलवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा धान की खेती में पोटेशियम उर्वरक का महत्व। 6:45 पर चिंतन कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे सुश्री निशा रहटगांवकर का आलेख सत्यमेव जयते। आज सुबह ये प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 7:05 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम अपने

श्रोताओं को सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर। कल सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्य पत्रिका मोर भुइयां और दिन में 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम प्रसारित करेंगे 11 बजे और विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे दिन में 11:30 से।

0: श्रोताओं, कल संध्या 5:05 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा हरी खाद, सनई ढेचा के खेती। इसके अलावा भेंट वार्ता के अंतर्गत स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित क्रम किसानवाणी गांव में हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा संध्या 5:35 पर, जिसमें सामयिक चर्चा का विषय रहेगा रसोई से सेहत तक। इसके अलावा स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में फोन इन कार्यक्रम होगा, जिसमें आमंत्रित चिकित्सक होंगी डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। कल संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आर्थिक विकास विषय पर कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 7:45 पर। कल रात 8:00 विविधा कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण में तालाबों की भूमिका विषय पर श्रेयांस बुधिया से भेंटवार्ता हमारे श्रोता सुन सकेंगे। कल रात 8:20 पर पेश करेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा, और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ और अब कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केशरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11:00 तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11:00 से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून और 12 जून 2026 को शाम 5:05 से 5:35 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हा गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के यात्रा ला करे है रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला दिन वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 3 जवान मिल। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला रेखांकित करे है। प्रधानमंत्री हा आज कहिन कि ये दौरान देश हा कतकोन बदलाव के साक्षी बने के संगे संग गरीब कल्याण और वंचित वर्ग ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गए है। उमन कहिन कि अंत्योदय जम्मू बेरा सरकार बर प्रेरणा स्रोत रहीस और प्रयास रहीस कि विकास के फायदा पाछू छूटे लोगन मन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री है कहिन कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसन हर पहल के उद्देश्य लोगन मन बर गरिमा और मौका दिवाना हवे। प्रधानमंत्री है कहिन कि गरीब और वंचित मन के उत्थान के संकल्प सबका साथ सबका विकास के मंत्र गरीब कल्याण, गरीब के सेवा ओकर जिंदगी में बेहतरी के संगे संग देश के विकास यही सब सरकार के सबले बड़का प्राथमिकता रहीस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला वीरता पुरस्कार दिन एमा छत्तीसगढ़ के 3 जवान

सामिल हे। असम राइफल में पदस्थ जवान भोजराम साहू मणिपुर में आतंकी मन के संग मुठभेड़ में साहस और वीरता पर शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। तऊ हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान के दौरान बड़का भूमिका निभैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर शुक्ला शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ह 21 जून के होवैया नीट UG पुनर्परीक्षा पर परीक्षा मन के शहर के सूचना जारी कर दे है। पंजीकृत

0: ये है 21 जून के होवैया नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर परीक्षा मन के शहर के सूचना जारी कर दे है। पंजीकृत उम्मीदवार मन आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन करके अपन परीक्षा शहर के जानबा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 बछर पूरा मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय काली ले राष्ट्रव्यापी समारोह के शुरुआत करी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन के अध्यक्षता करी। ये मौका में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन में जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाया जाही। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री 9 जून 2016 के ये अभियान के शुभारंभ करे रहीन। एमा गर्भवती माई लोगिन मल्ला मुफत में स्वास्थ्य सेवा दे जाते। देश के विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपन 90 बछर पूरा होए के उत्सव मनावत है। बछर 1936 में आजे के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाव बदल के ऑल इंडिया रेडियो राखे रहीस। बछर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के नावला बदल के आकाशवाणी करेगी। आकाशवाणी आज 5वें रेलवे स्टेशन चालन करत है। ये समाचार एक बार सुन लो। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशन मन के संचालन करत है। आकाशवाणी के प्रसारण 23 ठिन भाषा और 146 बोली में। आकाशवाणी के ध्येय हवाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के मौका में रायपुर में आज विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम हुई। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के 8 गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख मन के छायाचित्र दिखाएगी। प्रदर्शनी रोजे बिहनिया 11 बजे ले संझा 5 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। तो उन्हें 9 जून के अभिलेख मन के संरक्षण और ओखर महत्ता पर विशेष व्याख्यान राखे गए है। कार्यक्रम के उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर मल्ला सहेज के राखे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी 12 जून तक चली। संस्कृति विभाग डहर ले सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज ले आकार 2026 पारंपरिक और शिल्प और कला शिविर आयोजित करे जाते। 14 जून तक चलैया ए शिविर में युवा मल्ला 14 ठिन पारंपरिक कला विधा के प्रशिक्षण दे जाही। जेकर उद्देश्य लोक कला और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के संग नवा पीढ़ी मल्ला सांस्कृतिक विरासत ले जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकार और कला गुरु मन डहर ले दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाजे समाचार को थी। धमतरी पुलिस 480 किलो गांजा के संग 5 जिन तस्कर मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत 2.40 लाख रुपया ले ज्यादा के बताए जाते। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ले सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर आवत एक ठिन कार और पिकअप गाड़ी के जांच करेगी। इस दौरान एक गाड़ी मन में अब्बड़ मात्रा में सफेद बोरी में ले जात गांजा बरामद करेगी। पुलिस बताइन की आरोपी मन गांजा ला रायपुर और उत्तर प्रदेश में बेचे पर ले जात रही। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में हाथी के हमला में 2 जिन लोगों के मौत हो गए है। मिले जानबा के मुताबिक गुरु घासीदास तमोर पिंगला राइगर रिजर्व के देवसील गांव में रद्दा बनाए के काम चलत रहीस। पाछू रतिहा ए मजूर मन काम सिराए के बाद आराम करत रहीन। इस दौरान हुरहा ए हाथी पर हमला कर दिन। हमला में 1 जिन मनखे के मौकच में मौत हो गए तो उन्हें 1 जिन आने मनखे के मौत अस्पताल ले जात खानी हो गए। वन विभाग मामला की जांच करत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काया किंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना के विमोचन करी। ये प्रतियोगिता 12 ले 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में होही। मुख्यमंत्री विश्वास जतन कि ऐसा आयोजन ले खिलाड़ी मन ला नवा प्रेरणा दी और प्रदेश के खेल पहचान ला और मजबूती मिली। हाथी मन के मौत के कारण के वैज्ञानिक जांच वन्य जीव अपराध के पहचान और संरक्षण जैसन प्रयास उपर रायगढ़ में 2 दिन के विशेष प्रशिक्षण राखेगीस, जिमा प्रदेश के 78 वन अधिकारी और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ मन भाग लिन। शिविर में विशेषज्ञ मन बतायन कि छत्तीसगढ़ में एबेरा

0: करीबन 450 हाथी घूमत हवय। रायगढ़, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर जैसन जिला में हाथी मन के बाढ़त गतिविधि ल देखत ए प्रशिक्षण राखे गिस। विशेषज्ञ मन बताइन कि हाथी मन के मौत के सही जानकारी मिले ले अवैया बेरा में ऐसन घटना मन ला रोके और वन्य जीव संरक्षण के प्रयास मन ला और ज्यादा प्रभावी बनाए जा सकी। ए मौका में वन मंत्री केदार कश्यप कहिन कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम ले संगे संग जम्मू वन्य जीव मन के सुरक्षा ला बने ढंग के राखे के प्रयास सरकार ह करत हे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कोती ले काम करत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ के स्थापना के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दे है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर के स्थापना ले विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, जन जागरूकता कार्यक्रम और पीएचडी कार्यक्रम ला नवा दिशा मिली। मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदर्धा हवा गरेर के संग वर्षा होए के चेतावनी दे है। इस दौरान करीबन 50 ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले तेज हवा चल उहे कोनो कोनो जगह में गिरे के संभावना बताए गए है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अवैया 3 ले 4 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में पहुंच सकते हैं, जेकर बाद 12 जून ले प्रदेश में बने ढंग ले वर्षा होए के संभावना है। यही बीच आज राजधानी रायपुर के संगे संग कुछ एक जिला में हुरहा मौसम बदलिस और तेज हवा के संग हल्का वर्षा होइस। अब थोड़को समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक काली बिहनिया 11 बजे नवा रायपुर के मंत्रालय में होगी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपन बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन ले बनाए जात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज के निरीक्षण करें, संगे संग सबरी नदी ऊपर बनत इंटेक वेल के काम लगलो देखिन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला दिन वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग है वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदरहा हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। हम हाजिर हैं आपके लिए ईमेल फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने लेकर। और कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए हमारे आप सभी श्रोताओं ने की है। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, निम्नमाद जिंद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और गंडई पंडारिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डीके, सुबासु, डॉली और पूर्वेश साहू, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परिखर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, बागबहरा, भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन, फजिलका, पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लड्डी, सलानी, तिवांशी और वानी, आरबी खेरा, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनसी बुरांडे, खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैंकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लालबाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली कबीर जाटव और देवशंकर जमादार, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, रजौनी महोबा बुंदेलखंड से उदय भानपाल, जयहिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांशी बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश जाधव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, पौड़ी भाटा, कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यादव, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी, मुरादाबाद, दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगुस खातून, मुरादाबाद, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग, बराड़ा, अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल, पुरानी भिलाई 3, चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान अहमद सिद्दीकी, सहार नवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह।

रॉय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राजेश कुमार, और आप सभी हैं नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साह, टिकू मुस्कान, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। लीजिए, आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में एक नजर फिल्म का गाना। मजरूह के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल के जरिए फरमाइशें आप सभी ने भेजे हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवहाणकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, नरेंद्र महेंद्र मोदी, विक्रम मोदी और इब्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, कर्मा चौक लोहालीडी, जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, रोहांसी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदर, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रबान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री।

खरे, मजनू कटेला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और यवतमाल से राहुल, मरवन सलरा, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, और आप हैं कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, और हमारे ये श्रोता है कथियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, श्रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्र सेन, आप सभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। आपको मासूम फिल्म का गीत सुनवाकर गाया है अभिजीत और साधना सरगम ने, गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है, लीजिए ये गीत सुनिए।

पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, जगरावों से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बठियाना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति निधि, निखिल यश प्रयाण, शिवम रेखा और धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, और भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला और आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, शुभ, ऋषभ और ऋचा

0: देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर साइना हसन नाजिया इब्राहिम और आप सभी सनावत से हैं, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद सादाब खत्री, लूत्रा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श और आतका, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह आप सभी हैं, लोहगढ़ ठाकुरावाला से आपके साथ हैं राजदीप सिंह गुरनर और गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरीबाई मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ नामदेव, सौर्य नामदेव और बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम, वीणा पांडे, नयन पांडे और विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद साहिद, और आप सभी हैं ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, अरब खुराना, एस के पप्पी, सहारनपुर से आशु मोची, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से है विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, आप सभी ने सुनना चाहा है मनचली फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की आवाजें हैं इसमें, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा,
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा,
2: अच्छा

नानघाट काटलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टीकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिय, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत और सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन और वलीभाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, चाहत, बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबानाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और देगलूर नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश सुमित गवहाणकर, ध्वनि गवहाणकर, जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या रामटेके, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरैठी भाटापारा, पारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा नेहा और मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। आप सभी ने सुनना चाहा है हिना फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है, फिल्म का नाम हिना।

0: और अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर परमेंद्र कुमार केसरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने के पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 को शाम 5:05 से 5:35 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद विज्ञापन और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता, ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान जागर करने वाली जानकारी या प्रसारण

0: ना करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
6: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के बालो के डोरी ठेमा गांव के रहने वाले भोजराम साहू भी शामिल हैं। भोजराम साहू असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर हैं। उन्होंने मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति ने आज उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया।
7: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन असम राइफल्स, 15 नवम्बर 2024, आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से 2 विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोली बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में 3 विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीर कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को अभियान का शुभारंभ किया था। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाथियों की मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच, वन्य जीव अपराधों की पहचान, संरक्षण संबंधी प्रयासों पर रायगढ़ में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। शिविर में विशेषज्ञों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 450 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से हाथियों सहित सभी वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव वन्य संघर्ष को कम करने के लिए राज्य निरंतर प्रयास कर रही है। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,45,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर बस्तर से रही एक कार और पिकअप वाहन की जांच की गई। इस दौरान इन वाहनों में भारी मात्रा में बोरियों में ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गांजे को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की फिराक में थे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देवसील गांव में निर्माण का कार्य चल रहा था। बीती रात श्रमिक काम खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने श्रमिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता। यह प्रदर्शनी 12 जून तक चलेगी। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार 2026 पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं को 14 पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकारों और कला गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर शोधपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नव रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश

0: की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 9 सुबह 11 बजे नवा रायपुर नगर स्थित मंत्रालय में होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण सावंत ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही शबरी नदी पर निर्माणाधीन इंटेक वेल के कार्यों को भी देखा। दुर्ग पुलिस ने जामुल थाना क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 लाख रूपये का मादक पदार्थ बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के ईरा गांव में एक नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप में राज्य शासन ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन के टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपरांत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पापा, सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा।
5: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए ईमेल फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। वर्णी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ड्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। महसौल सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहानाज, तलत फरहत, रिप अत, नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े। भूचो कैचिया पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। विरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा और पूजा परिहार। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। अड़ारनांद घाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन। पीपरलोट सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। बलौदा से दिनहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। नेपानगर से सुदर्शन साह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र साह। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। पलारी से प्रकाश

वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम, टावरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आराधना फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, लीजिए सुनिए।

0: गांव जाखौत से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुकमणि बघेल, सारथी साहिल और भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंशु मोहित और तानिया नारंग, बुलडाणा वड़सिंडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, और बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल राजेश, रेशमा साहू, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा हल्का, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेखर लाहबख्श, राबिया से रहीम मन्ना, तखनपुर से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन, कुम्भारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्भार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश्वरी, रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा, धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया अयान। आप सबने सुनना चाहा है संगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: दिल जो प्यार करेगा

और इसी गीत के बाद ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात संध्या के 7:10 होने को हैं। कुछ एक क्षणों के बाद केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला किसान सशक्तिकरण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze, you know, the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting of this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन। पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू किए, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश किए। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे, जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2000

0: 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3, यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163%, यानी 163%, 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है।
1: जी
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद, और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए, और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे।

0: के ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के DBT यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं
1: जी।
0: अपने, रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान
1: जी
0: परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नियत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया, यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61

0: 1886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहाँ 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके
1: हाँ
0: माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे
1: जी
0: यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वही डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथेन किए गए, वो
1: हाँ
0: फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए, और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं, लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
0: ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है, तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए। ये
1: जी
0: फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या

0: महत्व है।
1: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
0: जी
1: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी, वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है, उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
0: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
1: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है, तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
0: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
1: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं।
0: जी
1: और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का, तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
0: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट, हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 ईयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
1: सी, फर्टिलाइजर इन इंडिया इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिया पर्टिकुलरली। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट रेज्ड द प्राइस फॉर पास्ट 2 decades और सो, एंड यूरिया करेंटली इज अवेलेबल एट 267 rupees पर बैग ऑफ 45 kg। लास्ट इंटरनेशनल प्राइस एट व्हिच इंडिया बॉट यूरिया वॉज $954 पर टन। So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range,
0: right.
1: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
0: okay,
1: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.

0: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
1: Thank you.
2: Thank you very much.
3: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.

केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला किसान सशक्तिकरण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत रोजा फिल्म से चित्रा और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। हम अपने श्रोताओं को बता दें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप का प्रसारण आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद हम आज रात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचना समाप्त हुई और अब आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। आपको सुनवाते हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी रोजा फिल्म का जो गीत आपने सुना उससे लिखा था पी के मिश्रा ने और संगीत की धुन बनाई थी AR रहमान ने। आइए आगे बढ़ते हैं, राज फिल्म का गीत सुनते हैं। अलका याग्निक की आवाज़ है इसमें, समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

हम अपने श्रोताओं को बता दें, श्रोताओं कल यानी मंगलवार को दिन में 10:30 पर रिकॉर्डिंग होती है फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद की। और इसके संदर्भ में यह सूचना है कि BSNL का हमारा फ़ोन नंबर जो है वो अवरोधित है, और इसके लिए आप जियो का नंबर है हमारा, उसे कृपया नोट करें और उस पर फ़ोन करके अपनी फरमाइश की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं 7752310026, इसे एक बार हम फिर कह रहे हैं 7752310026, ये जियो का नंबर है और इस नंबर पर हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए आप अपने फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। श्रोताओं एक और सूचना हम आपको दे दें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद का प्रसारण हम आज रात 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, सुनना ना भूलिएगा। और अब कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और हमशिका की आवाज में राबता एजेंट विनोद फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

0: और इसी गीत के बाद चित्रपट संगीत कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। ये आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद हम कुछ ही क्षणों के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी विशेषज्ञ होंगे प्रज्ञा पालीवाल गौड़, कुलपति भारतीय जनसंचार संस्थान और पूर्व महानिदेशक आकाशवाणी, प्रोफेसर अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक, डॉक्टर वर्तिका नंदा वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापक और मीडिया विशेषज्ञ, और श्री प्रदीप सरदाना वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ। ये कार्यक्रम कुछ ही क्षणों के बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
2: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
3: थैंक यू।
2: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
4: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों

0: करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है। इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए, फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, त्रिवर्ती गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी, और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर तीन कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है मछुआरों को, देनी है सुनामी का, हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार, या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है, या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के। तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी।

0: राजधानी ने एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय, FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आया ही नहीं, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउसहोल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था, कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्र लोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, और लोग रेडियो पर राय रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले, तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं।

आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये

0: कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु से हुई, तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म
1: जी।
0: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
2: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी में बोलते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया, तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है, तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
3: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
2: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
3: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे
2: जी।
3: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है आपसे बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से

0: कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है और जो शिक्षित है उसकी आशा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया, किसानों की आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा, तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन सुखाय की, चरितार्थ की, आकाशवाणी ने हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है, चाहे प्रधानमंत्री के निधन की और चाहे सुनामी हो। आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़े शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत रहा। अभी भी हर बार हम जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज है, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाज आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें, वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भरचीन हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो, तब जाके ये जयमाला शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश, बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम

0: आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो अकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी अकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हों, कवियों को,
1: पंत जी हों, सबने, महादेवी वर्मा हों,
0: सुरेश जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है। आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980 82 83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेट्रो रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते, लोगों से भी बात करते, कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आप आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉयस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे

0: में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में या पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे, और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए, टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम है जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो कहा कि अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहां किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में हैं, पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता ही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने से पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार

0: इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था। किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है। और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइच वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना।
4: बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को आकाशवाणी ने अपना लिया। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
5: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सरवाई से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहां जुड़ा हूं, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता।
1: रेडियो वाले आपका नाम है
5: सर? ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम

0: शामिल किया जाए।
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
0: जी आप पूछिए सवाल।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
0: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्र कार्यक्रम चल रहे हैं और कवि भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
0: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे हैं जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
3: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
0: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
3: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
0: बिल्कुल।
3: और जितने कार से सफर
0: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
3: तो
0: रेडियो,
3: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
0: बिल्कुल।
4: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
4: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे।
0: अच्छा।
4: सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
0: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए, क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
1: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से। आकाशवाणी जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
0: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
1: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बस सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाश

0: वाणी पर अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि मन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 बरसों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद हम अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीर पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण आग में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने का। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
5: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। फ्रांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
6: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर।

0: जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। इनमें काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक

0: उन्मुख व्यवसायों, ध्यान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस आरएनडी एंड इनोवेटेड बिजनेसेस।
2: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा, इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें शिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 15 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि

0: 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके बाद शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह में सशस्त्र और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें। भरत व्यास के बोलों को सुरों में ढाला सतीश भाटिया ने।

0: वर्मा मलिक के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, महेंद्र कपूर को आपने सुना, फिल्म थी दिल और मोहब्बत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: पाकीज़ा इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था और यही थी आपके लिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती हैं पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है।
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

0: शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।
1: दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं

8 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही है।

भले ही शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आईं, क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है, फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज। शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थी। वो कुछ अलग करना चाहती थी। शिल्पा जो चाहती थी वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेराय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही निकले।

रिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ित

की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

ने अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्म सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सैरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती है। एक माँ के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद आता।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्क्याओ फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनके फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आईं, साथ थे जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी।

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

0: ये तो मानना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें, हमारी यही कामना है।
1: शाम भी खूब है पास, मैं वो

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।
1: पतंगा पतंगा जल जल जल मर जाए, ये दीपक झूम झूम लहराए। पतंगा जल, जल

मन की थकन को है नहीं जाना।

पतंगा जल जल जल मर जाए ये दीपक।

पतंग जल जल जल मर जाए, ये दीपक झूम झूम लहरा।

चाहता है छोड़ कर के दुनिया बस जाए तेरी आंखों में। महकते दिल का अरमा यही है कि बस के रह जाए तेरी।

ये शोखी और नजाकत और शरारत भरी निगाहें शर्मा भी रही है। कह दो कि मोहब्बत है, खोया खोया सा रहता है ये दिल, धड़कता है तो बस तेरे ख्यालों में। कह दो कि

रहेंगे साथ जिंदगी भर, इस दिल का यही वादा है। दे देंगे जान तुम पर ओ दिलबर, अब तो यही इरादा।

घेर लिया है तेरी महकती जुल्फों ने, लिपटा हूं तो लिपटा ही रहूंगा, मिला है सुकून तेरे पलकों की छांव में, जो बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा।

0: नमस्कार,
1: और 11:05
0: आकाशवाणी
1: मिनट पर
0: समाचार के
1: अंग्रेजी में
0: साथ मैं
1: समाचार
0: अरुण
1: हम
0: कुमार।
1: आकाशवाणी
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर रात के 11 बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार हिंदी में।

समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11:10 हुए हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन सभा संपन्न होती है। कल के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।